ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you, so you can help people like Jasmine.
2: Oh, terrible weather.
1: It's raining cats and dogs out there, and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry, and we'll help keep you covered.
3: See ya, good luck with the interview.
2: Thank you, bye.
1: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected.
6: This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
0: Sari Raat, Bollywood Classics ka saath. Sirf Leica Gold par.

0: This is like a gold.
1: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Like a radio और like a gold आपकी आवाज बन सकते हैं. On air हो, online या on ground, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@likearadio.com.
2: सिर्फ like a gold पर.

ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

में उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीस एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म न कोए नानक हुक्मे जे बुझे।

तो मैं विसर ना जाए जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले जे तिस

मन बुद्ध, मन्ने सगल पवन की शुद्ध, मन्ने मोह चोटा ना खाए, मन्ने जम के साथ ना जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए, मन्ने पत्स्यों प्रगट

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहाँ विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती

जो तुद भावै साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार। वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो स

अनाहत जुग जुग एक ओवेश आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एक ओवेश एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख

जोर जोर ना जीवन मरण है जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: Breakfast with Dee Prancha.
1: Oh, how relaxing was that yoga session? I feel so free.
2: Speak for yourself. I can never let go. Bladder leaks.
1: I know, right? I'm so done compromising. I got a new bit of yoga kit. Always discreet pads. Here, try for yourself next week.
2: Love you lots, but this thin pad won't keep up with my heavy leaks.
1: Just trust me on this one. So, all zen and liberated, are we?
2: Let's just say I found my flow.
1: Always discreet. Live with no compromise.
3: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस.
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड.
4: विजिट TravelHubWorld.com.
5: इस दिसंबर ठंड को बोलो गुड बाय.
6: जॉइन महाराजा टूर्स ऑन अ 14 नाइट कैरिबियन क्रूज डिपार्टिंग 6 दिसंबर विद डायरेक्ट वर्जिन फ्लाइट्स फ्रॉम हीथ्रो टू बारबेडोस. खूबसूरत बीचेस, सनशाइन और 8 अमेजिंग कैरिबियन आइलैंड्स आपका इंतजार कर रहे हैं. प्राइसेस फ्रॉम जस्ट £1,499 पर पर्सन ट्विन शेयर. सीट्स लिमिटेड है तो आज ही बुक कीजिए. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
7: One performer,
8: countless personalities,
7: a whole universe of entertainment.
8: Sunil Grover, live UK tour 2026.
7: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
8: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabhi to brand new surprises.
7: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
8: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
7: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
10: द वेट इज फाइनली ओवर.
11: अब सही सुर लगा रहे मुमताज.
10: मिर्जापुर इज कमिंग to the big screen.
12: Gaddi na to virasat se milti na siyasat se.
10: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
13: Agar Kaleen bhaiya hai wo king of Mirzapur.
10: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
14: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji, dusra koi nahi khulega.
15: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
16: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
17: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
19: Cutthroat Ke Khiladi.
20: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's, and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
21: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
22: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Gold. The perfect soundtrack for a British summer heatwave.

0: Deep Roger, making you feel good every weekend breakfast.
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
4: ये तो बताओ कोई पता चला
5: गुरु गुरु
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
5: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है
6: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर
4: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर
7: टू बुक कॉल 0208 514 5400

0: online at Eventbrite.
1: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11, 11.
3: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
4: Danube 11, 11. Danube Properties. 11.
5: Maharaja Tours के साथ इस नवंबर एक्सप्लोर कीजिए सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड, सेंटोसा आइलैंड, बाटू केव्स, जेंटिंग हाइलैंड्स, बैंकॉक के फ्लोटिंग मार्केट्स और ब्यूटीफुल टेंपल्स, फिर पटाया और कोरल आइलैंड का मजा. फैंटास्टिकल फार ईस्ट फ्रॉम सिर्फ £2,799 पर पर्सन. फ्लाइट्स, 4-star होटल्स, इंडियन खाना और अमेजिंग एक्सकर्शंस सब इंक्लूडेड. विजिट maharajatours.co.uk और कॉल 07956154846.
6: व्हाटफुड में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस व्हाटफुड, कॉल 01923227274. बुक योर टेबल टुडे.
8: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
9: Hi, this is Arbaaz Khan.
10: For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
11: Deep Roger, waking you up every weekend. Like

0: 01923 883 100. That's 01923 883 100.
1: At all protected.
2: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
3: सोना टूर्स .co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027। बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ। कॉल सोना टूर्स नाउ ऑन 0208951011।
4: 40 मिलियन पीपल लिसन टू कमर्शियल रेडियो ईच वीक। That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
5: Vande Ramam Sadaiva Mariyada Purushottamam Lokanathai Shri Ram Shri Ram.
6: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
7: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: Up next, Ritu Sharma with The Ritu Sharma Show on Laika Gold.
9: Ab hoga weekend aur bhi suhana. The Ritu Sharma Show mein every weekend 10 a.m. to 1 p.m. on Laika Gold Radio, Laika Radio Greater Manchester and Laika Radio Midlands Par.

0: लता जी और किशोर कुमार की आवाजों में आ गले लग जा फिल्म से था ये गाना, जिसमें राहुल देव बर्मन का म्यूजिक और मनमोहन देसाई की फिल्म, और उससे पहले बप्पी लहरी ने धूम मचाई थी डिस्को डांसर फिल्म के गीत बनाकर, और इस फिल्म से मिथुन चक्रवर्ती रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। आज इन्हीं दो गीतों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, और आप सबको बताते चले कि ये है आपका मनपसंद लाइका रेडियो नेटवर्क, जहां पर आप सुन रहे हैं लाइका गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर एंड मिडलैंड्स, और मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सबका साथ देने के लिए अब से लेकर दोपहर के एक बजे तक, और चाहूंगी आप भी दोपहर के एक बजे तक मेरा साथ देते रहिए। आपके मैसेजेस मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है, और बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमारे साथ शेयर की हैं, तो हम भी उन्हें ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: वन पाउंड आज आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग दी योनो SBI यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Leica Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
2: Deirdre, look. It's the bottom Liz this time, sliding across their car bonnet.
3: Leave them be, Philip. They just claim confident.
2: Claim confident?
3: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
2: Deirdre? Deirdre? Come back here.
4: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 kilograms जस्ट 8.96, 10 kilograms ओनली 16.96, एंड द बिग 20 kilograms पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
7: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02 03 963.

0: ऐसे
1: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर्स,
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियाँ लाए,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सेट को माइक।
3: व्हाटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी,
4: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
3: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
4: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस व्हाटफुट, कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
7: हे प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
8: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
9: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
10: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
11: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
12: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
13: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है ये बताना भी नहीं आता। ये खूबसूरत सा रोमांटिक गाना जिसे लिया था मैंने फिल्म बाजीगर से, जिसमें अनु मलिक का म्यूज़िक था, ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ नितिन चंद्रा जी की वाइफ ममता वलानी जी को। नितिन चंद्रा जी का मैसेज आया है और आपने बताया है कि आज उनकी वाइफ ममता वलानी जी अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, तो इस गाने से अच्छा और कौन सा गीत होगा। आपकी ओर से ये गाना आपकी वाइफ ममता जी को जाता है। और इसके अलावा रुतुन हिमानी भी आपको जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाइयां भिजवा रहे हैं। तो पूरे परिवार की ओर से ममता जी एंड ऑफ कोर्स नितिन चंद्रा जी की ओर से और हमारी ओर से आपको जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। हैप्पी बर्थडे।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो लीजिए, आपके मैसेजेस लगातार मिलते जा रहे हैं और प्रीति कहती हैं कि हमें आता है आपको प्यार जताना और खुलकर आपको प्यार करना। क्या बात है प्रीति, ये आपका प्यार ही है, आपका आप हमेशा मेरा साथ देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड यही कहना है संध्या भाव सर, आपका स्वागत है शो में। दिनेश पोपट जी कहते हैं मुझे विनोद राठौड़ की आवाज़ में ये गाना पसंद है। तो आपको बता दूँ कि ये गाना दो आवाज़ों में रिकॉर्ड किया गया था, विनोद राठौड़ और पंकज उधास। आज मैंने आपको पंकज उधास वाला वर्जन सुनाया है, लेकिन आई थिंक फिल्म में विनोद राठौड़ वाला वर्जन है। सो, आपको ये गीत डेडिकेट करते हैं। आपके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हैं गिरीश जी भारत इंदौर से, स्वागत है आपका भी। इसके अलावा महेंद्र बजारिया जी आप हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू। थैंक यू राजेश जी, आपको हैप्पी संडे की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। हैरो से दिव्या जी हमारे साथ है, गुरुदेव गांजा क्या बात है, कहते हैं मेरा मन पसंद ऋतु शर्मा शो और लाइका गोल्ड। ओहो हो, इस तरह की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू गुरुदेव आपके मैसेज के लिए। थैंक यू रजिंदर राज जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मालती जी, कहती हैं आपने तो मेरा दिन बना दिया, वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ। एक्चुअली ये मैंने आपसे कहा था और आपको ये गाना भी पसंद है, तो चलिए ये गाना आपको डेडिकेट करते हैं। आपके साथ साथ हमारे साथ हैं अनिल सोनी जी वियाना से, वंदना गुट का प्रोग्राम सुन रही हैं। वजाहत जी अलेक्सा पर हमें सुन रहे हैं, कहते हैं नाइस शो एंड सॉन्ग्स एज ऑलवेज, क्या बात है, थैंक यू आपके इस मैसेज के लिए। थैंक यू हंसा जी, रोजी रजीना बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। शेखर जी, रोशनी जी, हिमांशु पटेल, तोची जी एंड ऑफकोर्स हमारे विजय गुडूरी जी, आज का विचार आपने आज शेयर किया है, कहते हैं समय हर किसी को मौका देता है लेकिन उस मौके का परिणाम हमारी सोच और हमारा कर्म तय करते हैं। बिल्कुल 100% सच बात। और आज आप थोड़े टायर्ड हैं क्योंकि कल टेंपल गए थे और टेंपल में तो देर हो ही जाती है जब जन्माष्टमी होती है, क्योंकि भगवान रात को 12 बजे ही तो जन्मे थे। तो रिलैक्स कीजिए, संडे का दिन है और हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे गाने आपको सुनवाए। जासू जी स्वागत है आपका, भरत गंगाराम जी, अर्जुन जी एंड ऑफकोर्स हमारे शबीर जी, आपने चार लाइनें लिखकर भेजी हैं, कहते हैं सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चाय के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और आपकी याद के बिना दिन की शुरुआत नहीं होती। क्या बात है, क्या खूबसूरत लाइन लगी है। तो चलिए मैं भी आपको एक खूबसूरत गाना सुनवा ही देती हूँ।
1: ये है लाइका गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: इस फिल्म में ये गाना दो बार है, एक बार किशोर दा की आवाज में जिसे अमिताभ बच्चन गाते हैं, और दूसरी बार लता जी की आवाज में जो मौसमी चैटर्जी पर पिक्चराइज किया जाता है। और दरअसल मुझे लता जी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है, और यही कहना है हमारी प्रज्ञा का, कहती है मुझे भी लता जी वाला वर्जन ज्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ा फास्ट है और इस गाने में बहुत प्यारी भी लग रही है छोटी सी मौसमी चैटर्जी। और ये फिल्म भी बहुत अच्छी है, अगर आपने नहीं देखी हो तो कभी टेलीविजन पर मिल जाए तो देखेगा, क्योंकि आई थिंक एक चैनल है जो पुरानी ही फिल्में दिखाता है जिस पर 70s 60s 80s की फिल्में आती हैं और 90s की भी, तो कभी कभी मेरी पसंद की कोई फिल्म आती होती है तो मैं उसे देखने लगती हूँ। ये फिल्म अच्छी है, मैंने देखी है। और हमारे नितिन चंद्र जी का कहना है कि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही प्यारा सा गीत मेरी वाइफ को डेडिकेट किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। तो चलिए, आप खुश हुए, मैं ये खुश हुई जानकर। और इसके अलावा मालती जी, थैंक यू आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, थैंक यू दिव्या जी, रोशनी जी, आंटी जी और दीपक पटेल जी, एच एंड से आपने बड़ा सुंदर मैसेज लिखा है जिसे मैं जरूर पढ़ूंगी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
0: तो आपने लिखा है कि जय श्री कृष्णा ऋतु, आपकी मम्मी ने जरूर आपके मुंह में हनी डाला होगा जब आप जन्मी होंगी। यू आर ए बोर्न शो प्रेजेंटर विद faultless delivery and what sweetness, thank god for giving us you। क्या बात है, इतनी सुंदर बातें आप लोग कैसे सोच लेते हैं। बहुत ही प्यारा मैसेज आपने लिखा है और आपने मेरा दिल भी खुश कर दिया है ये बात कहकर। और आपने मुझे मेरी माँ की भी याद दिला दी है कि जब मैं जन्मी होंगी उनकी गोद में होंगी, वाह कितना सुंदर सीन है। सो थैंक यू दीपक जी पुरानी याद दिलाने के लिए और आपके इस प्यारे से मैसेज के लिए, आप साथ दे रहे हैं जानकर मुझे बहुत खुशी है। इनफैक्ट अगला जो गाना है वो आपको डेडिकेट करते हैं, रफ़ी साहब की आवाज़ में है। और उसके अलावा जितने भी साथी मेरे साथ जुड़े हैं सभी का धन्यवाद।
1: ये है Like a Gold, Like a Gold, Feel Good Classics Non-Stop with Ritu Sharma. This is Like a Gold. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: So, अगर आप घूमने जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो Southall Travel को कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें फोन कीजिए 0208-574-8410 पर। Southall Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive. This is Ritu Sharma.
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests.
3: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahin nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub, best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHubWorld.com.
5: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
7: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
8: Hey, प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
7: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.

0: क्या खूबसूरत गाना है मोहम्मद रफी और आयशा भोसले की आवाजों में। और इस गाने में आयशा जी के नखरे, हाय हाय हाय, क्या कहना है उसका। और हमारे विजय जी का कहना है कि इस फिल्म के सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए ये गाना भी हमने आपको डेडिकेट किया। और इसके अलावा संध्या भावसर भी कहती है, ऋतु दिल खुश हो गया, क्या बात है, आज मेरा भी दिल खुश है। इसके अलावा शेखर आनंद जी आपका मैसेज मिला है, और फरीदा जी आज आपने तो कमाली कर दिया। लिखती है लाइका गोल्ड की तारीफ में है ये लाइनें, जरा ध्यान से सुनिए। फरीदा जी लिखती हैं, या अली मदद ऋतु, माय एंगर कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय वरी कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय टाइटनेस कंट्रोल लाइका गोल्ड, माय हैप्पीनेस इज लाइका गोल्ड, एंड माय ऑल डे हैप्पीनेस इज ओनली लाइका गोल्ड। क्या बात है, इतनी तारीफ सुनकर आज लाइका गोल्ड का 2 किलो वजन तो जरूर बढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और मैसेज पढ़ लेते हैं। और ये मैसेज आया है ऑल द वे फ्रॉम स्वीडन, जहाँ पर मनिका और तेजस प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो मनिका एंड तेजस, आपका मैसेज पढ़कर बहुत खुशी हुई, थैंक यू, वेलकम टू द शो। और आपने लिखा है कि स्वीडन में भी बैठकर दिल हिंदुस्तान से जुड़ जाता है जब लाइका गोल्ड पर ऋतु शर्मा की आवाज़ सुनाई देती है। क्या बात है, आपके मुँह से ये तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। और लिखते हैं कि उनकी आवाज़ में ऐसा अपनापन है कि दूर रहकर भी लगता है कोई अपना पास है। बस हम इतना कहना चाहते हैं कि स्वीडन से सुनने वाले इस दिल की ये आवाज़ हमेशा खास रहेगी। क्या बात है, आप भी मेरे लिए बहुत खास हैं। थैंक यू तेजस, थैंक यू मनिका, आई लव यू। और देखते हैं अगला गीत कौन सा है, वो जरूर आपके नाम पर करेंगे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound के बदले में आपको मिलेंगे 127.67 भारतीय रुपए, 374 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LEICA Radio mobile app now. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 105.35 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station.
4: ये है Leica Gold, 10:35 AM.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: No, sorry, mate.
7: No, we don't have that part.
8: Have you tried down the road?
9: We can get it in, but it won't be for a few days.
10: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
11: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा।
12: नाम है तेरा।
11: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर है।

0: केसी बुकाड़िया की फिल्म जिसमें बप्पी लहरी का म्यूजिक और जिसमें थी खूबसूरत जया प्रदा, जिन्हें केसी बुकाड़िया ने ही अपनी ज्यादातर फिल्मों में हीरोइन बनाया है, और साथ में थे अमिताभ बच्चन। आपने ये गीत सुना, और उससे पहले राजपूत फिल्म का गाना जिसमें राजेश खन्ना के साथ थी हेमा मालिनी। और इन दोनों गीतों के साथ लीजिए, प्रोग्राम का सेकंड आवर शुरू हो गया है और आप सुन रहे हैं द ऋतु शर्मा शो। और आप सब जानते हैं कि संडे के दिन सेकंड वाले आवर में मैं आपको सुनाती हूँ जोड़ी नंबर वन। और आज की हमारी जोड़ी है देवानंद और साधना। और देवानंद और साधना मैं जानती हूँ हमारे बहुत सारे लिसनर्स के फेवरेट हैं, और इन दोनों ने सिर्फ दो ही फिल्मों में साथ में काम किया है। बताइए क्या कमाल की बात है, थोड़ी और फिल्मों में काम कर लेते तो मेरे पास गाने बजाने के लिए चॉइस थोड़ी ज़्यादा हो जाती, यू नो व्हाट आई मीन। लेकिन दो ही फिल्मों में काम किया है, तो अब मुझे उन्हीं दोनों फिल्मों में से एक एक गाना लेना होगा। और विजय जी, आपने गैस बिल्कुल सही किया है। तो देखते हैं पहला गाना कौन सा बजता है। लेकिन गाने को बजाने से पहले एक डेडिकेशन है जिसे ज़रूर प्रोग्राम में मैं शामिल करना चाहूँगी। और ये मैसेज भेजा है जय प्रकाश लखानी जी आपने। लिखते हैं ऋतु नमस्ते, लवली सॉन्ग्स। और आपके बेटे मितेश की आज हैप्पी वाली 40th बर्थडे है, और पूरा लखानी परिवार मितेश को जन्मदिन की बधाइयाँ दे रहा है, हैप्पी बर्थडे कह रहा है। तो लीजिए हमारी ओर से भी मितेश आपको हैप्पी 40th बर्थडे, और आपके पूरे परिवार का प्यार और आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। अगला गीत बिल्कुल बर्थडे बॉय के नाम पर करते हैं, जो है हमारे आज की जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। लेकिन उससे पहले
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आज £1 आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए। लेकिन याद रखिए, ट्रांसफर आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Leica Gold.
0: आपको बता दें कि प्रोग्राम के इस वाले आवर में एक कंपटीशन भी है। जी हाँ, एक कंपटीशन भी है, और उस कंपटीशन में आप क्या जीत पाएंगे ये मैं आपको बताऊंगी अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: क्या खूबसूरत गाना है। फिल्म असली नकली से देवानंद और साधना ने इस फिल्म में काम किया था और इस फिल्म में और भी गाने हैं, लेकिन जब भी मैं इस फिल्म के गाने देखती हूँ तो मुझे सबसे ऊपर यही गाना नज़र आता है, इसलिए आज प्रोग्राम में इस गाने को ही शामिल किया। और ये था आज के जोड़ी नंबर वन का पहला गाना। दूसरा गीत सुनवाने से पहले मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ रितेश आपको, ये गीत पसंद था, आपके नाम करते हैं संध्या भाव सर, थैंक यू। एंड योगेंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हैं, कहते हैं सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। जैस्मिन जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब समय है प्रोग्राम में कॉम्पिटिशन का, यस एक कॉम्पिटिशन है और उसमें आपको क्या मिलने वाला है बताती हूँ ना।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो जोड़ी नंबर वन का दूसरा गीत सुनवाने से पहले मैं आपको कंपटीशन के बारे में बता देती हूँ। ये कंपटीशन आपके लिए लाए हैं लाइक अ रेडियो नेटवर्क विद सनातन इवेंट्स, और जिसमें हम आपको देने जा रहे हैं 2 tickets टू द स्टेज स्पेक्टिकल दिवाली स्टोरी विच विल बी हेल्ड एट ओवो अरीना वैमली ऑन संडे 27th September। स्टूडेंट प्री शो पहले होगा जो 5 बजे से 5:45 तक होगा एंड द मेन इवेंट फ्रॉम 6:15 टू 9:30 PM। और अगर आप इस दिवाली स्टोरी के 2 tickets जीतना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है वर्ड दिवाली और उसके बाद आपको सारे डिटेल्स, अपना नाम लिख दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए और अपना ईमेल एड्रेस भी लिख दीजिए, बिल्कुल सही सही। और हाँ, अगर आप इस इवेंट में जा सकते हैं तभी पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, फटाफट कर दीजिए। और अगर आप आज विन हो जाते हैं, विनर बन जाते हैं, तो चिंता की बात ही नहीं है, फ्री में आप इस शो को देखने जा सकते हैं। और अगर नहीं भी बनते हैं विनर तो फिकर नॉट, आप टिकट्स खरीद सकते हैं diwalistory.com पर जाकर। और जो विनर होंगे, ध्यान से सुनिए, अगर आज आप इस कॉम्पिटिशन के विनर बनते हैं तो आपको जो टिकट्स हैं वो आपको वाया AXS ऐप के थ्रू भेजे जाएंगे, इसलिए आपको AXS ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा और आपको अपना करेक्ट ईमेल एड्रेस हमें देना होगा, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस भी अप्लाई होंगी, तो जो जो मैंने आपसे मांगा है फटाफट भेज दीजिए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: और इस वाले आवर के एंड में मैं बताऊंगी कि कौन बने हैं विनर जिन्हें मिलते हैं 2 tickets दिवाली स्टोरी के। और अब शुरुआत है आपको आज के जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना।
3: ये है Like a Gold,
1: Tasty Track of the Hour brought to you by Coca Noodles.

0: आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में था ये गाना और जयदेव ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। हमारी आज की जोड़ी नंबर वन का दूसरा गाना, और इस गाने को सुनकर भी आपके बहुत मैसेज आए। संध्या कहती है, अभी नहीं ऋतु, अभी नहीं जाऊंगी, अभी तो बहुत सारा समय बाकी है। लेकिन उससे पहले तलत शहनवाज जी, आपको गीत पसंद आए, शो को एंजॉय कर रहे हैं, थैंक यू आपके मैसेज के लिए। इसके अलावा अनिल सोनी जी वियाना में सुन रहे हैं और कहते हैं, ऋतु देवानंद एक ऐसा एक्टर था जिसने मैक्सिमम हीरोइन के साथ काम किया। सच्ची में मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि ऐसा कौन सा हीरो है जिसने मैक्सिमम हीरोइंस के साथ काम किया। और आप कह रहे हैं कि देवानंद, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गई हूँ कि वो देवानंद ही थे या कोई और। आप भी सोचिए, बताइए, ये बात अच्छी है, सोचने लायक है। लेकिन थैंक यू आपके मैसेज के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटिशन चल रहा है, और इस वाले आवर के एंड में बताने वाली हूँ कि विनर कौन बने हैं। लेकिन उससे पहले कुछ और है जो आपको बताना चाहती हूँ।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
0: और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी, द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट यू बाय NKN मीडिया इज बैक। कल भी था और आज भी है एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। आप जा सकते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी गेस्ट भी हैं, अरबाज खान कल आए थे, जैकलिन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाकिरी, उनसे मिल सकते हैं। फ्री एंट्री है, रजिस्टर कीजिए nknpropertyexpo.com पर। और इसके एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं लाइका रेडियो नेटवर्क।
2: रिची शर्मा ऑन लाइका गोल्ड।
3: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
4: Leica Extra Podcast Update.
0: और अगला गीत सुनाने से पहले आपको फिर से याद दिला दें कि Leica Extra पॉडकास्ट का नया एपिसोड ड्रॉप हो चुका है, और इस बार का टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल, जिसे होस्ट किया है रवि शर्मा ने, और आप इसे सुन सकते हैं Spotify पर, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms पर।
4: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Leica Gold. travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208782833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
9: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
10: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Okay.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
14: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
15: ये तो बताओ, कोई पता चला?
14: गुरु गुरु,
16: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
17: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
18: शीघ्र शीघ्र
16: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
19: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
20: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
21: Hi, this is Arbaaz Khan. For 2 days, Dubai's leading developers will be there in London, 5th and 6th September 2026, London Hilton on Park Lane. Speak directly with the developers shaping Dubai's future. I look forward to seeing you at the NKN Media Dubai Property Expo in London. Discover your next investment.
22: Winter's coming and Mera Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
23: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mera Boiler, get ready for winter.
24: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
25: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
24: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
26: A spectacular musical experience is coming to Ovo Arena Wembley on the 27th of September.
27: Hey, Prasanna Mahalakshmi kehti hai, bolo prem ki bhasha.
26: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
28: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. On this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
29: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे, और जिसने अपने गुरु की माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे देने से रोक सकते. बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है.
28: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के इस गाने के बाद चलिए खास इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देते हैं।
1: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
0: तो चलिए आपको बताते चलें कि ये संदेश जो है आपके लिए लाए हैं मर्सिडीज बेंज बैंस और हमारे Like a रेडियो नेटवर्क की ओर से है। ये कैसी जानकारी है जो शायद आपको थोड़ा चौंका सकती है। यूके में गाड़ी खराब होने की वजह से बिजनेस को हर वैन पर औसतन हर रोज 1172 पाउंड्स का नुकसान होता है और इसीलिए मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके लिए लाया है अप टाइम प्रॉमिस, रोड साइड असिस्टेंट और सर्विस के लिए अधिक समय से लेकर वाहन की रियल टाइम जांच और खराबियों की तुरंत पहचान और भी बहुत कुछ उनके पास है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और कई डिजाइन किए गए फायदे भी है। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है, आज ही मर्सिडीज बेंज वैन सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। आपको बता दें कि आप mvvans.co.uk/uptimepromise पर जाकर अधिक जानकारी पा सकते हैं।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: £1 आज आपको देगा 127 भारतीय रुपए, 376 पाकिस्तानी रुपए एंड 166 बांग्लादेशी टकास।
3: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
2: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is £105.35 per gram.
2: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma. This is Like a Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
6: देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग
5: डेजर्ट सफारी
6: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम
5: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे
6: तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410 दैट्स 8574-8410
2: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
7: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
8: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danew Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danew Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
10: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
11: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
10: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
11: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
12: Hey, प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा.
11: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: 0730099823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 0730099823.
13: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off.

लीजिए लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गाना आप में से बहुत सारे साथियों ने पसंद किया है। ये गाना पसंद है तेजस एंड मनिका आपको, आपके नाम करते हैं, स्वीडन में आप हमें सुन रहे हैं। और इसके अलावा अरुणा जी कहती हैं ऋतु मेरे नाम कीजिए गाना, शीतल कहती हैं व्हाट ए क्लासिक सॉन्ग, एंड उसके अलावा राजेंद्र सिंह कालरा आपको ये गीत पसंद है, विजय गुरुरी जी आपने भी इस गीत को पसंद किया है, सो थैंक यू सभी ने इस गीत को पसंद किया है। और अब समय आ गया है कि मैं आपको बता दूं कि आज के कॉम्पिटिशन के विनर कौन बने हैं। और जो दिवाली स्टोरी देखने जा रहे हैं आज का कॉम्पिटिशन जिन्होंने जीता है

0: उनका नाम है मनोहर नेहरा। आप बनते हैं आज के इस कंपटीशन के विनर और आपको मिलते हैं 2 टिकट्स बिल्कुल फ्री में। लेकिन आप अपने फ़ोन पर AXS ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको जो टिकट्स हैं वो ईमेल के थ्रू इसी ऐप पर मिलेंगे। तो ये काम आप फटाफट कर लीजिए, क्योंकि जब हम अनाउंस करते हैं सारी बातें तब आप शायद भूल जाते हैं या मिस करते हैं, फिर बाद में आप हमसे पूछते हैं कि टिकट्स नहीं मिले, और हमारे लिए पीछे जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतने सारे कॉम्पिटिशन जो होते रहते हैं। तो ध्यान से AXS को ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और टिकट्स आपको इसी के थ्रू मिलेंगे। और अगर आप विनर नहीं बने हैं कोई और जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो आप diwalistory.com पर जाकर टिकट्स बुक करा सकते हैं।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड।
0: और लीजिए शारदा जी की आवाज में ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। न्यूज के उस पार सुनवाऊंगी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक्स और खेलेंगे 3 वर्ड्स गेम भी। एंड मनोहर नेहरा, वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस।

0: किशोरदा और गुम लता जी की आवाजों में ये गाना फिल्म आक्रमण से लिया था, जो राकेश रोशन पर पिक्चराइज था। और आपको बता दें कि आज 6 सितंबर को राकेश रोशन जी की बर्थडे है। ही इज 77 टुडे। 1949 में बॉर्न राकेश रोशन को कौन नहीं जानता। कल उन्हें हमने यादें में भी याद किया था और उनके बहुत सारे गाने भी सुनवाए थे। ये गाने आप सबने पसंद किए हैं, थैंक यू। प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर शुरू हो गया है और अब समय है आज के 3 वर्ड्स गेम का। तो आज के जो 3 वर्ड्स हैं, जिन्हें मैं हमेशा की तरह किसी बॉलीवुड के गीत से उठाती हूँ, और आज का गाना बहुत ही पॉपुलर है और आप सबको पता है। तो पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबा और तीसरा है जमी। 1966 में आई थी ये फिल्म। आरडी बर्मन का म्यूजिक है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। बताइए ज़रा कौन सा है ये गाना। पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबान और तीसरा है जमी। 1966 की फिल्म, आरडी बर्मन का म्यूजिक, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। अगर आपको ये गीत पता है तो भिजवाइए अपना मैसेज हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: I repeat once again, पहला वर्ड है आसमां, दूसरा वर्ड है मेहरबान और तीसरा है जमी। जमी, I should say जमी। 1966 की फिल्म है, आरडी बर्मन का म्यूजिक है, मोहम्मद रफी की आवाज है। कौन सा है ये गाना।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: आज 1 pound आपको देगा 127.15 भारतीय रुपए, लेकिन याद रखिए ये ट्रांसफर आपको करवाना होगा बाय SBI branch online or by using the Yono SBI UK mobile app. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right here, right now.
3: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
4: It is game on Now.
3: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL and the Scottish Premiership.
4: Wow.
3: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
4: Now that is world class.
3: Stream Sky Sports on Now today.
2: Right now.
5: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
6: Ye hai.
7: Like a gold.
6: Like a gold.
8: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
9: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Vaidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
10: TravelHubWorld.com Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit travelhubworld.com.
11: Travel Hub, best service with unbeatable price.
10: At all protected.
11: Visit travelhubworld.com.
12: Namaskar. March 2027 માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટસીઈંગ, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4,499 pounds પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. મહારાજા ટૂર્સ, તમારો વિશ્વસનીય ટ્રાવેલ પાર્ટનર. જાપાન તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
14: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो एक्सपीरियंस द डिवाइन
15: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए
14: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है
16: दिवाली स्टोरी द जर्नी ऑफ राम एंड सीता
17: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर
18: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
17: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन
19: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
23: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
24: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
25: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
26: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
27: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
28: Tu bhi aaja ke aa gayi rut

0: मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में मर्यादा फिल्म से था ये गाना, और इस गाने में नाच रही थी माला सिन्हा, और आप जानते हैं माला सिन्हा ही है हमारी इस बार की आर्टिस्ट ऑफ द वीक। और अब शुरुआत करते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक की, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आज बहुत सारे लोगों ने आंसर्स तो दिए हैं लेकिन सही आंसर्स कुछ ही लोगों के हैं, और जिनके सही आंसर्स हैं उनके नाम बताती चलूं। राजेंद्र सिंह कालराम, महेंद्र बाजारिया जी, उल्लास दिव्या जी हैरो से, विजय गुरुरी जी, मालती जी, नरेन पटेल, नीलेश तन्ना, निम्मी जी, कुकी, जगजीत संगर, गीता जोशी, तोची, अनूप चतुर्वेदी। इनके अलावा जिन भी लोगों ने जवाब दिए हैं वो फिर से सोचें और बताएं कि गाना कौन सा है, क्योंकि फिल्म 1966 में रिलीज हुई थी। ज़रा ईयर को, यानी कि जो साल है, वर्ष है, उसे ध्यान रखिए। और हाँ, एक और बात मैं आपको बताने वाली हूँ कि आजकल एक फिल्म भारत में बड़ी चर्चाओं में है जिसका नाम है हनुमान अंश। आपने भी उसके बारे में सुना होगा, बहुत हिट हो रही है, और मुझे लगता है क्योंकि वो इंडिया में इतनी ज़्यादा हिट हो गई है तो यहाँ पर भी वो रिलीज़ होने वाली है, और या तो फ्राइडे रिलीज़ हो गई है या मे बी कमिंग फ्राइडे होगी, लेकिन मेरा प्लान है देखने जाने का, क्योंकि भारत में उस फिल्म को पहले तो स्क्रीन्स ही नहीं मिल रहे थे, लेकिन जब वो फिल्म लोगों को पसंद आई तो उसने बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया, अच्छा बिजनेस कर रही है और लोग बहुत देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको भी मौका मिले देखकर आइए और हमें बताइए कि वो फिल्म आपको कैसी लगी। लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का सिलसिला।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
1: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का ये पहला गाना था एस टी बर्मन का म्यूजिक और फिल्म का नाम तीन देवियां। एंड थैंक यू हरीश छाबड़ा जी आपके बहुत ही प्यारे से मैसेज के लिए। और अब आपको बताते चलें कि यस हमारे महेंद्र जी ने बताया है कि हनुमान अंश फिल्म जो है वो 11 सितंबर को रिलीज़ हो रही है और भारत में धूम मचा रही है, तो मेरा तो प्लान है उसे देखने जाने का। तो आप भी देखाइए अगर आपके पास समय हो, और फिर हम अगले हफ्ते उसके बारे में ज़रूर बात करेंगे। एंड उषा खोड़ा जी एंड हमारी तृप्ति जी आपका आंसर नहीं उषा खोड़ा जी आपका आंसर बिल्कुल सही है, और बाकी जिन्होंने जो जवाब दिए हैं वो इतना सही नहीं है। लगता है आज आप सबको गूगल ने घुमा दिया है।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आज से भाई बिग बॉस 20 शुरू हो रहा है।
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
0: तो मैं भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं बिग बॉस को फॉलो करती हूँ, और बहुत सारे साथी आज ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे शाम का। और इस बार भी बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। ये दिखाया जाएगा हर रोज़ 9:00 यानी कि 9:30 कलर्स टीवी पर और जियो स्टार पर आज से ही। और फॉर द फर्स्ट टाइम जियो स्टार विल स्ट्रीम एवरी एपिसोड अलॉन्ग विद अ लाइव 24/7 फीड फ्रॉम द बिग बॉस 20 House. और जियो स्टार इज नाउ ऑल्सो अवेलेबल एज एन ऐप ऑन Sky TV.
1: दिस इज Ritu Sharma.
3: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: चलिए सुनाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।

0: आशा दाई और अमित कुमार साहब की आवाजों में इल्जाम फिल्म का खूबसूरत संगीत, बप्पी लहरी साहब का संगीत। और अगर फिल्म की बात की जाए तो कमाल का कहा जा सकता है शुरुआती दौर गोविंदा साहब का। हालांकि गोविंदा साहब ने सबसे पहले फिल्म तन बदन को साइन किया था, लेकिन सिनेमा घरों में उनकी पहली फिल्म इल्जाम ही मानी जाती है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इस फिल्म में पहले गोविंदा पसंद नहीं थे, पहली पसंद नहीं थे। इनसे पहले मिथुन चक्रवर्ती को ये रोल ऑफर किया गया था। मिथुन चक्रवर्ती साहब उस जमाने में बड़े स्टार थे और उनके पास वक्त नहीं था, इसलिए डेट्स के चलते ये किरदार आया गोविंदा साहब की झोली में। और गोविंदा साहब तो जानते ही हैं, उन्होंने पूरे हौसले के साथ इस ऑफर को ग्रैब किया और कमाल की ये फिल्म साबित हुई। हालांकि पहले इस फिल्म का टाइटल भी बहुत सारे बदलाव हुए। टाइटल में इस फिल्म का पूरा नाम झूठा इल्ज़ाम रखा गया, लेकिन बाद में इसे सिर्फ इल्ज़ाम रखा गया। और इस फिल्म का करिश्मा ये रहा कि गोविंदा साहब के करियर में चार चांद लग गया और उन्होंने एक नहीं दो नहीं 49 फिल्में इस फिल्म के बाद साइन कर ली, क्योंकि फिल्म ने बम्पर सफलता हासिल की थी। बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ गोविंदा की ही बातें हो रही थी। हालांकि इस फिल्म में गोविंदा और नीलम कोठारी के अलावा उस दौर के दिग्गज शशि कपूर साहब और खामोश कर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी मेन किरदार में थे, लेकिन सारी लाइमलाइट लेकर गए नीलम और गोविंदा साहब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे प्यारे संदेशों का, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे सुपर संडे वाली महफिल में, आपको हमेशा की तरह यही वादा मिलेगा सुपर डोज शुरू का, सुनते रहे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 127 rupees and 15 paise। आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Right here, right now. Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
3: It is game on now.
2: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL, and the Scottish Premiership.
3: Wow.
2: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
3: Now that is world class.
2: Stream Sky Sports on Now today.
4: Right now.
5: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
6: Leica Gold.
7: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colours TV and Jio Hotstar.
8: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
9: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place.
11: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
13: Danube 11, 11.
4: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
4: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
13: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
14: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
15: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
16: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019 238 83100. Atoll protected.
17: SonaTours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call SonaTours now on 0208 951 0111.
18: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
19: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
18: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
19: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
18: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
19: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
20: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
21: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Like a Goon, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Goon और online सुनो likeagoon.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
22: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net. Mm-hmm.

0: Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Aasha Dai ki solo voice mein mere Sanam film ka ye khoobsurat sa gana, all time classic. Agla geet again Aasha Dai, lekin saath mein hai Kishore Da. और फिल्म का नाम है सीता और गीता. सुनते रहे.
3: ये है लाइक अ गोल्ड टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर, ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
1: पंचम दागा शानदार संगीत आशादाई किशोरदा की आवाज सीता और गीता में कमाल का ये सिनेमा इस फिल्म में हेमा मालिनी जी ने कमाल का काम किया था। वैसे बात करें अगर आपने समंदर के करीब गए होंगे तो आपने देखा होगा कि लहरें उड़ती हैं नीचे जाती हैं उड़ती हैं नीचे जाती हैं और साहिल के पास आकर अपना वजूद खो देती हैं। बस उसी तरह के उसी थीम में आज हम शो को लेकर बढ़ रहे हैं। ये रेशमी जुल्फें जुल्फों का अंधेरा आशाताई की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गीत सुना। अब उसके बाद हमने आपको सुनाया सीता और गीता आशाताई और किशोरदा की आवाज़ में, थोड़ा सा एनर्जी भरने वाला ये सॉन्ग। अब फिर से रिलैक्स होने का वक्त आ गया है क्योंकि अब बात होने वाली है पलकों की। सुनते रहें।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि भाई द दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो ब्रॉट टू यू बाय एनकेएन मीडिया इज बैक 5th and 6th September एट लंदन हिल्टन पार्क लेन। सेलिब्रिटीज के रूप में आपको वहां पर मिलेंगे अरबाज खान, जैकलीन फर्नांडिस, चित्रांगदा सिंह एंड नरगिस फाखरी। फ्री एंट्री है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप nkpropertyexpo.com पर। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका और रेडियो।
3: Hello. Wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: for London at Breakfast and Drive.
1: Right here, right now.
2: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
3: It is game on Now.
2: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL and the Scottish Premiership.
3: Wow.
2: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
3: Now that is world class.
2: Stream Sky Sports on Now today.
1: Right now.
4: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: Us kids are mesmerised by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around one in five young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kids-tests.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price.
6: At all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.
8: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
9: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागसन.
10: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर. सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा.
11: नाम है तेरा.
10: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें. इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो. मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें. जय श्री राम.
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान. देखिए दुबई की शान. फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार? यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410. दैट्स 85748410.
13: साफो ट्रेवल. Auto protected.
14: SonaTours.co.uk special offer Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of September and get up to 300 off. Call SonaTours now on 02089510111.
15: Dubai is coming to London.
16: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
15: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
16: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
15: Hurry and register now
16: at nknpropertyexpo.com.
15: Your next investment could begin here.
16: Official radio partner, Leica Radio.
17: Look, there's a snail and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
18: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
17: Conditions apply. See online for details.
19: Ranjish se hai आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
0: It's here. Leica Radio is now broadcasting Birmingham-wide on full-scale DAB digital radio.

0: लता जी की आवाज में वो कौन थी फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत, अब आप बताएं। और हम सुनने वाली थीम के लिए आज का गोल्डन वर्ड है सनम जनम। याद रखिए सनम और जनम दोनों, लेकिन एक ही गाना एक की तरफ से। याद रखिए, सुनते रहें सुपर संडे वाली ये पाठशाला। थोड़ी देर में गीत आ रहा आपके साथ लता जी और किशोरदा की आवाज में।
1: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
2: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
1: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
2: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
1: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
2: And with global account linkage,

0: आज की थीम को ध्यान में रखते हुए एकदम एप्रोप्रिएट सॉन्ग अलका याग्निक और अमित कुमार साहब की आवाज में हम फिल्म का हम तक पहुंचाया है निमी जोरा जी और
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Bahut bahut shukriya Nimi Johra ji aur Preeti ji.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
1: मनाडे और लता जी की आवाजों में चोरी चोरी फिल्म का एक खूबसूरत संगीत शंकर जैकिसन साहब का संगीत हम तक पहुंचाया है मीना शाह जी और सोमिला मुंगुर जी ने. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही.
2: Like a gold.
3: On Rock with Golden Rock.

0: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा भीगी पलखे फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत हम तक पहुंचाया है अमित पटेल साहब, उल्लास जी, शैली सिंह और हंसुमती जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ हॉल ट्रैवल।
0: साउथ हॉल ट्रैवल इज नोन फॉर इट्स कॉम्पिटिटिव हॉलिडे डील्स टू दुबई। कॉल कीजिए साउथ हॉल ट्रैवल को, नंबर है 0208-574-8410। साउथ हॉल ट्रैवल इज अटोल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk.
2: Ye hai Leica Gold.
3: Leica Gold.
1: Leica Extra podcast updates.
0: Leica Extra ka new episode number 32. Title Mohammed Wakil special hosted by Ravi Sharma ji. In dono ki guftagu sunne mein dekhne mein aapko bada maza aayega. Leica Extra podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
1: Leica Extra is here. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
4: Right here, right now.
5: Football is back on Sky Sports, and you can stream it on Now.
6: It is game on now.
5: With 1,500 matches this season from the Premier League, WSL, the EFL, and the Scottish Premiership.
6: Wow.
5: You can stream in minutes, and with flexible plans, you can have it your way.
6: Now that is world class.
5: Stream Sky Sports on Now today.
4: Right now.
7: 18 plus UK only. Broadband 2.5 megabits per second required. Full terms apply.
8: Yeah.
2: Leica Gold.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
10: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
9: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
10: विजिट TravelHubWorld.com।
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
11: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
14: अपना बनाया तेनू
13: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफर्ड टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फर्ड टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। वीआईपी एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 0793913726। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट 407 हाई रोड इल्फर्ड।
15: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203 773 633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार सबको मिलेगा वरदान ऑफ एक्स्ट्रा जीवन दान तथा टू मेरी जान एक्स्ट्रा लाइफ एक्स्ट्रा मौका मतलब एक्स्ट्रा ड्रामा और एक्स्ट्रा धोखा स्ट्रीमिंग फ्रॉम 6 सितंबर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार एंड कलर्स.
19: Dubai is coming to London.
20: This 5th and 6th of September, step into the Dubai Property Expo by NKN Media.
19: At London Hilton on Park Lane, meet top elite developers from Dubai, explore hand-picked real estate opportunities and discover what makes Dubai one of the world's most exciting property markets.
20: Special appearances by Chitrangda Singh, Sunil Shetty, Nargis Fakhri and Arbaaz Khan.
19: Hurry and register now
20: at nknpropertyexpo.com.
19: Your next investment could begin here.
20: Official Radio Park. Leica Radio.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
21: आप सुन रहे हैं
22: बातें चटपटी चाहिए और गीत चाहिए ओल्ड मनोरंजन की दुनिया में 24 कैरेट गोल्ड रवि शर्मा का मनोरंजन प्रोग्राम लाइका गोल्ड पर सुनिए मंडे टू फ्राइडे

0: भाई इस गीत का कोई मुकाबला ही नहीं। रफी साहब ने इस गीत को जिस खूबी के साथ गाया है और साथ में मजरू सुल्तानपुरी साहब ने जिस सादगी के साथ इस गाने के बोल लिखे हैं, कमाल है। पत्थर के सनम फिल्म का ये खूबसूरत गीत हम तक पहुंचाया है संध्या भावसर जी, मकबूल साहब और सरफराज जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 128, अफगानी 87.22, पाकिस्तानी रुपीस 375.63, बांग्लादेशी टका 166.35, श्रीलंकन रुपीस 444.12 एंड 1 US डॉलर 1.35.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: हमेशा की तरह सोने के भाव बढ़े हुए। गोल्ड प्राइस आज के दिन 1 ग्राम आपको मिल रहा है 105 pounds and 35 pence पर ग्राम।
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: कमाल है भाई, लता जी और रफी साहब की आवाज में आई मिलन की बेला, शैलेंद्र साहब के लिखे हुए बोल और शंकर जैकसन साहब ने किए थे इस फिल्म के सारे गीतों को कंपोज। और ये गीत हम तक पहुंचाया है निर्मला जी और फरीदा गुलाम अली जी। माफी चाहूंगा नौशीन खान जी और दिव्या जी, क्योंकि आप लोग बहुत देर से एंट्री कर रहे हैं और हम तक बहुत सारे गाने पहुंच चुके हैं। और अगला गाना तो मैं बिल्कुल यहां से हिला ही नहीं सकता, वरना बहुत गालियां पड़ने वाली हैं, क्योंकि ये गाना हम तक पहुंचाया है कीर्ति जी, गुरु शरण जी जी, मनीषा जी और टोची पनेसर जी ने। फिल्म का नाम है संगम, लता जी और मुकेश साहब की आवाज। अगला घंटा दिल की बत्ती जलाने का।
1: ये है
2: लाइका गोल्ड,
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: छूकर मेरे मन को किया तूने इशारा, किशोरदा की आवाज में याराना फिल्म का एक खूबसूरत सा गीत। और अब वक्त आ चुका है आप सबकी दिल की बत्ती को जलाने का, क्योंकि हम बताएंगे आपको आज के गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस। पहले कायदे प्लस कानून ऑप्शंस होंगे ए बी एंड सी, जो कि गानों के होंगे, और उनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना है और उसे वोट की तरह कास्ट करना है। जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट समय रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह आज का बनेगा गोल्डन रॉक। तो बिना वक्त जाया किए गोल्डन रॉक के तीन ऑप्शंस ये रहे आपके साथ। ऑप्शन ए है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ऑप्शन बी है हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, फिल्म का नाम है अनोखी अदा। ऑप्शन सी है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, फिल्म का नाम है घर। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन ए है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ऑप्शन बी हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम फ्रॉम द फिल्म अनोखी अदा। ऑप्शन सी आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, फिल्म का नाम है घर। और आप सबके लिए वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें। हमारा अगला गीत हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक माला सिन्हा जी के ऊपर पिक्चराइज किया हुआ गाना, फिल्म का नाम है गुमराह। सुनते रहें और बिल्कुल भी गुमराह ना हो, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: £1 के बदले आज आपको मिल रहा है इंडियन करेंसी में 127 रुपीज एंड 15 पैसे। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai.
3: Like a gold.
2: Like a gold.
4: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: Europe aur UK ke sapne dekh rahe hain? To Mantra Holidays ke saath travel kijiye. Dil ki dhadkane badha dene wale Scottish Highlands, Snowdonia ke afsanvi landscapes aur stunning coast of Cornwall ko explore kijiye. Aapka safar hoga majestic Swiss Alps se lekar romantic Paris aur timeless beauty of Italy ke through.
7: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Dubai is an opportunity to now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11. Danube Properties. Danube 11, 11.
12: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
13: Dreaming of paradise?
14: Discover the Indian Ocean with Skylord Cruise and Holidays. Book exclusive Emirates holiday offers to Mauritius, the Maldives, Seychelles and Sri Lanka.
13: Choose from luxury beach escapes, family resorts and incredible multi-center holidays, all at exclusive prices.
14: Call Skylord Cruise and Holidays today on 01923883100. That's 01923883100.
13: At all protected.
15: The wait is finally over.
16: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
15: Mirzapur is coming to the big screen.
17: Gaddi na to virasat se milti na siyasat.
15: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
18: Abhi Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
15: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie in cinemas now.
19: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा.
20: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
21: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
22: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
23: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
24: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
25: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
26: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
27: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: अच्छा।
1: बिल्कुल सही बात है, ये मत सोचो कल क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। गुमराह फिल्म का एक गीत आशताई की आवाज में हमारी आर्टिस्ट ऑफ द वीक माला सिन्हा जी के ऊपर पिक्चराइज किया गया। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आप सबके लिए आज के गोल्डन राग के तीन ऑप्शन, जिनमें से आपको एक चुनना है और वोट की तरह कास्ट करना है। ऑप्शन ए है तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, फिल्म का नाम है प्यासा सावन। ऑप्शन बी है हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम, फिल्म का नाम है अनोखी अदा। और ऑप्शन सी है आपकी आंखों में कुछ महके हुए से ख्वाब है, फिल्म का नाम है घर। अभी जो आप गीत सुन रहे थे रवि साहब का, कहा जाता है जहाँ न पहुँचे कभी वहाँ पहुँचे रवि, लेकिन हम कवि से रिलेटेड एक गाना आपको ज़रूर सुनाएंगे रवि साहब की आवाज़ में। लेकिन ये मत भूलिए कि वोटिंग लाइन्स अभी तक ओपन है, अपने अपने वोट कास्ट करते रहें।
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Main kahin kabhi na ban jaun tere pyar mein hai kavita. Kavi sahab ki awaaz mein, yani Rafi sahab ki awaaz mein, pyar hi pyar film ka geet sun rahe the aap. Voting lines open hai, apne apne vote cast karte rahe.
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट laikaradio.com.
3: लाइका रेडियो नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग इन ग्रेटर लंदन, ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स विद द यूकेस बिगेस्ट एशियन हिट्स.
4: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.

0: लता जी और रफी साहब की आवाज में वापस फिल्म का ये खूबसूरत संगीत, ऐसा लग रहा है कि वापस इसे सुना जाए। मुझे लगता है कि मैं आज इस गाने को ड्राइव करता हुआ सुनता हुआ जाऊंगा, बड़ा ही प्यारा संगीत। और इसी के साथ बता दूं आपको कि वोटिंग लाइन्स हो चुकी हैं आज के लिए बंद और चुना जा चुका है आज का गोल्डन राग। देखते हैं क्या है सरप्राइज आप लोगों के लिए।
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 pound के बदले इंडियन करेंसी में 127.76, अफगान अफगानी 87.11, पाकिस्तानी रुपीस 375, बांग्लादेशी टका 166.11, श्रीलंकन रुपीस 443.56 एंड 1 US डॉलर ऑलमोस्ट 1.35.
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
1: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £105.35 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: ये है Leica Gold 10:35 AM.
4: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: बेस्ट बेस्ट बेस्ट कॉम्बिनेशन पंचमता और गुलजार साहब का घर फिल्म का एक खूबसूरत गीत आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्यार सबसे ज्यादा वोट इस गाने को दिया और भारी मतों के साथ इस गीत को विजयी बनाया। जल्दी से लेते हैं नाम मनोहर साहब यानी कि जिन्हें प्यार से मनु कहते हैं, रेखा सुमारिया जी के भामरा, प्रीति फ्रॉम बेल्जियम सी टू, महेंद्र पटेल साहब, हंसा बोरा जी, हंसुमती जी, अयूब चौहान साहब, उल्ला जी, ईला जी, शेखर जी, टोची पनेसर, भावेश पटेल, तरुण पटेल, कंचन जी, सुमित चौरसिया एंड पंकज वर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पहला वैसे ऑप्शन ए बहुत करीब था लेकिन जो जीता वही सिकंदर, घर फिल्म का इस गीत को आपने सबसे ज़्यादा वोट दिया। नेक्स्ट आ रही हैं सरिता जी, होगी आपसे अगले सप्ताह अगले वीकेंड मुलाकात, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
1: साफो ट्रेवल ऑटो प्रोटेक्टेड।
3: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
4: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ कोई पता चला?
4: गुरु गुरु,
5: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
4: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है,
5: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
3: शीघ्र शीघ्र।
5: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November।
7: टू बुक कॉल 0208-514-5400, book online at Eventbrite.
8: Exclusive radio partner Leica Radio Network.
9: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर, सिद्धाश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा,
10: नाम है तेरा,
9: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक। आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 0208426078 पर कॉल करें। जय श्री राम।
11: 0730-99-8823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730-99-8823।
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
14: अ स्पेक्टेकुलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th of September।
15: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
14: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
16: वेडिंग सेलिब्रेट

0: तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाजें आपने सुनी है ऑन लाइका रेडियो नेटवर्क के लाइका गोल्ड पर। जहां भी बैठे सुन रहे हैं, लंदन में हैं, आसपास के इलाकों में हैं, मैनचेस्टर में सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में सुन रहे हैं, बर्मिंघम में सुन रहे हैं, लेस्टर में सुन रहे हैं, जहां भी सुन रहे हैं, आपका स्वागत, आपका खैर मकदम करती है आपकी अपनी सरिता सबरवाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ वीकेंड अच्छा गुजर रहा है। क्यों नहीं, हम जो हैं आपके साथ। जी हाँ, आपका मनोरंजन सुबह सुबह शुरू हो जाए। वेल तो वैसे 24 घंटे होते हैं, लेकिन सुबह सुबह वीकेंड पे आते हैं पहले दीप राजा, फिर रितु शर्मा, देन अनुराग और फिर सरिता की बारी आती है। तो मैं वेरी मच हाजिर हूँ आपकी सेवा में, आप ही के अपने रेडियो पर। और मुझे नहीं मालूम किस जरिए से आप सुन रहे हैं, किस जरिए से आप हमारे साथ जुड़े हैं। आर यू लिसनिंग ऑन AM फ्रीक्वेंसी 1035 पे सुन रहे हैं, DAB पे, अलेक्सा पे, गूगल होम एंड likeagold.com, जिस भी जरिए को आपने चुना है आपका स्वागत, आपका खैर मकदम है। और उम्मीद करती हूँ लाउड एंड क्लियर ये आवाज़ आप सब तक पहुँच रही है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, ऐसे ही अपना प्यार मुझ तक पहुंचाते रहे मेरे कहे बगैर। आपके इतने सारे मैसेजेस ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं हमारे व्हाट्सएप पर, और थैंक यू सो मच कि बड़े प्यार से आप सुनते हैं, इंजॉय करते हैं प्रोग्राम। राइट, बैक टू बैक दो गाने सुने। पहला गीत मैंने चुना था फिल्म कुछ कुछ होता है, इस फिल्म से क्यों चुना था ये भी बताऊंगी ज़रूर। बता दूं कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था करण जौहर ने, प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर जी, एंड इस फिल्म का संगीत दिया था जतिन ललित ने। फिल्म में काम किया था शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी, सलमान खान एंड सना साईद, अनुपम खेर के अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट थे। नीलम की भी एक छोटी सी गेस्ट अपियरेंस थी। और ये फिल्म 16 अक्टूबर 1998 में रिलीज़ हुई थी, लेकिन इसलिए नहीं इसको शामिल किया क्योंकि ये रिलीज़ अक्टूबर में हुई, वो सिलसिला चलेगा सेकेंड एंड थर्ड आवर में। और दूसरा गीत मैंने चुना था फिल्म दोस्ताना से, जिसे डायरेक्ट किया था राज खोसला जी ने, सलीम जावेद साहब ने इसकी स्टोरी लिखी थी, प्रोड्यूस बाय यश जौहर। फिल्म में काम किया था अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, प्रेम चोपड़ा ने, और भी बहुत सारे कलाकार थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और ज़बरदस्त गीत आपने सुना, तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। बहुत अच्छी आवाज़ें किशोरदा एंड आशा भोसले जी की। अब ये दोनों गाने जो थे ये बहुत पॉपुलर हुए थे, इनफैक्ट फिल्म ही बहुत पॉपुलर हुई थी। और इन दोनों गीतों को चुनने का एक मकसद ये था कि आज हम याद कर रहे हैं प्रोग्राम के इस आवर में करण जौहर जी के पूज्य पिताजी यश जौहर जी को, जिनकी आज बर्थ एनिवर्सरी है। यश जौहर जी के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिसने बॉलीवुड की चमक तमक के पीछे रहकर हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाई है। वो कौन है? यश जौहर जी, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की। यश जौहर जी का नाम एक प्रोड्यूसर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने फिल्म प्रोडक्शन को अपनी मेहनत, लगन और विजन, उनकी क्या थी उसका एक अलग मुकाम दिया। यश जौहर जी वॉज बॉर्न ऑन 6th of September 1929 इन अमृतसर, पंजाब में, एंड इन अ पंजाबी हिंदू फैमिली एसोसिएटेड विद आर्य समाज, एंड ही मैरिड हीरू जौहर इन 1971, एंड उनका बेटा आप सभी जानते हैं करण जौहर, बॉर्न इन 1972, इनहेरिटेड हिज फादर्स लीगेसी एंड एक्सपेंडेड धर्मा प्रोडक्शंस इनटू वन ऑफ इंडियस leading production houses. Yash Johar died on 26th of June 2004 in Mumbai when he was 74 years old due to a chest infection while also battling cancer. So, इनकी दो फिल्मों के तो गीत आपने सुन ले जो इन्होंने प्रोड्यूस की थी, और भी एज ए असिस्टेंट प्रोड्यूसर भी इन्होंने बहुत सी फिल्मों में अपना योगदान दिया, जिनके गीत मैं ज़रूर शामिल करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर गीत जो हैं वो 2000 अपवर्ड उन फिल्मों के हैं जिन्हें करण जौहर ने डायरेक्ट किया, लेकिन प्रोड्यूस बाय धर्मा प्रोडक्शन, और अभी भी वो अपने पापा का ही नाम यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसी फिल्में जिनको उन्होंने असिस्ट किया था, उन फिल्मों के भी गीत शामिल रहेंगे। उन्हीं में से अगला गीत मैंने क्यों किया है, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत आप तक पहुँचाऊँ, तो मैं आपको जल्दी से चॉइस देती हूँ। जल्दी से बताइए कि आपके दिल के करीब कौन सा गीत है। इस फ्रॉम द फिल्म ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ के सारे गाने बड़े अच्छे थे, होंठों में ऐसी बात, वो भी बहुत बहुत ज़बरदस्त गीत, लेकिन मैं इन दो गीतों में से एक गीत प्ले करना चाहती हूँ, आसमां के नीचे, और दूसरा है ये दिल ना होता बेचारा, वो वाला गीत। तो कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है, ए आसमां के नीचे और दूसरा ये दिल ना होता बेचारा? अपनी पसंद जल्दी से मुझ तक पहुंचा दीजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, भी अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पैसे पहुंचाना चाहते हैं इंडिया में कहीं भी, तो काम बड़ा आसान है। आप ब्रांच में जाकर पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं ऑनलाइन, और SBI Yono मोबाइल ऐप अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो उसके जरिए भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा रहती हैं, और आज आपके 1 British sterling pound के बदले आपको मिल सकते हैं 127 rupees and 15 paisas।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: No, sorry, mate.
3: No, we don't have that part.
4: Have you tried down the road?
5: We can get it in, but it won't be for a few days.
6: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving. With 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorized repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
7: Har meal ko banao thoda aur special with Tilda Grand Extra Long Basmati Rice. And right now, make your shopping grand with these special offers at independent retailers. 5 kilograms, just 8.96. 10 kilograms, only 16.96. And the big 20 kilograms pack, just 29.96. Perfect for everyday meals, family get-togethers or har special celebration. Hurry! Offers ending soon. Pilda Grand Extra Long Basmati Rice. Make every day grand.
8: अयोध्या की आवाज अब लंदन की धरती पर। सिद्ध आश्रम धाम में परम पूज्य श्री राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में देवी पंडित गौरांगी गौरी जी द्वारा श्री राम कथा
9: नाम है तेरा।
8: 4 से 8 सितंबर दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आइए इस पवित्र मास में संगीतमय श्री राम कथा का अमृत पान करें। इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर हैरो। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए 02084260678 पर कॉल करें। जय श्री राम।
10: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
11: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
12: Dubai is the place. 11, 11.
11: Call the Danube Properties London office today on 02 03 963.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: गीत आपने सुना फ्रॉम द फिल्म ज्वेल थीफ और ज़्यादातर वोट्स इसी गीत को मिले थे. जिन्होंने इस गीत की रिक्वेस्ट की थी मुस्कुरा रहे होंगे कि उनका गीत हमने प्ले कर दिया. थैंक यू सो मच. बहुत लंबी लिस्ट है इसलिए मैं सबके नाम इंडिविजुअल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन आपके मैसेजेस का बहुत बहुत शुक्रिया. यश जौहर जी ने अपने करियर में कई यादगार फिल्में प्रोड्यूस की जैसे दोस्ताना, दुनिया, अग्निपथ, गुमराह, डुप्लीकेट और बाद में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं. फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ड्रीम्स और एज एन असिस्टेंट प्रोड्यूसर उन्होंने फिल्म गाइड, ज्वेल थीफ इन 1967, प्रेम पुजारी 1970, हरे रामा हरे कृष्णा इन 1971 एंड द जंगल बुक इन 1994 असिस्ट, ही वॉज द असिस्टेंट प्रोड्यूसर. तो इसीलिए मैंने ज्वेल थीफ का गीत शामिल किया. और अगला गीत भी बहुत प्यारा है और ये है फ्रॉम द फिल्म प्रेम पुजारी. यू लव इट.
0: दिस इज लाइक अ गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
3: Bola jaye phoolon ka shabab usme phir

0: 15 minutes after 5 o'clock. मैं सरिता आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ. If you have just joined me, तो अभी अभी आपने दो गीत सुने back to back इस आवर के. And पहला गीत मैंने किशन कन्हैया से लिया था, जो कि 1992 की फिल्म थी. आपने देखी थी ये फिल्म, 1992 में आई थी ये फिल्म किशन कन्हैया, जिसे प्रोड्यूस किया था, डायरेक्ट किया था एंड प्रेजेंट किया था किसने, राकेश रोशन जी ने. और इस फिल्म में काम भी किया था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एक्टर थे इस फिल्म में राकेश रोशन, जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं. और दूसरा गीत मैंने चुना था खुदगर्ज फिल्म से, जो 1987 में आई थी, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. एंड इस फिल्म में इन्होंने प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को एंड डायरेक्ट भी किया था. आज राकेश रोशन अपना बर्थडे मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से उन्हें बर्थडे पर बहुत बहुत बधाई. और ये ऐसे दिन की ज़िंदगी में बार बार आएँ, हज़ार बार आएँ, खुशियाँ मनाते रहें. अगर आप भी इनके साथ साथ अपना बर्थडे शेयर कर रहे हैं, तो मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे. कोई और खुशी का मौका है तो बराबर के शरीक हैं हम आपकी खुशियों में. राकेश रोशन का फिल्मी सफ़र किसी रोलर कॉस्टर से कम नहीं है. रोलर कॉस्टर की जो राइड होती है, वैसा ही इनका करियर भी रहा. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर एक एक्टर की थी और 1970 में फिल्म घर घर की कहानी, याद है आपको, उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की और धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट फिल्म मेकिंग की तरफ बढ़ने लगा. आज राकेश रोशन नागराथ इनका सरनेम है. आज ही के दिन 1949 में इनका जन्म हुआ था. इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, स्क्रीन राइटर हैं, एक्टर हैं हु वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स एंड ही अपीयर्ड इन 84 फिल्म्स इन द 1970s 80s. लेकिन फिर एज एन एक्टर ही इज़ मोस्टली नोन फॉर हिज सपोर्टिंग रोल्स इन बिग बजट फिल्म्स. लेटर हिज इन्होंने कहा कि मैं अपना डाइवर्ट करता हूँ अपना करियर, और इन्होंने डायरेक्टिंग की तरफ अपना कदम रखा. और इन्होंने ये कहा कि बिगनिंग में कि सभी फिल्में के से होंगी 1987 से लेकर अब तक. और उन्होंने एज ए फिल्म मेकर खुदगर्ज बनाई, खून भरी मांग ब्यूटीफुल फिल्म थी, किशन कन्हैया, करण अर्जुन का होना प्यार है एंड उसके बाद कोई मिल गया इन 2003 एंड इट्स उनके उसके जितने भी सीक्वल थे एंड क्रिश एंड सीरीज बनी उसकी भी. एंड ही वाज ही हैज़ वन द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर फॉर कहो ना प्यार है एंड कोई मिल गया जैसी फिल्मों के लिए के ज़रिए अपनी एक अलग इन्होंने पहचान बनाई. अब दो गीत आपने सुन लिए और अब कुछ एक गीत मैं और शामिल करना चाहती हूँ. अगला गीत तो है फिल्म पराया धन से, जो मैंने चुन लिया है. लेकिन उसके बाद आंखों आंखों में फिल्म में बड़े प्यारे गीत थे, तो उन्हीं में से दो गीत हैं जिनमें से मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा गीत शामिल होना चाहिए. डू यू वॉन्ट टू हेयर दो बातें प्यार भरी, ये गाना सुनना चाहते हैं, दो बातें वो वाला गाना, दो बातें प्यार भरी, या फिर आंखों आंखों में द टाइटल ट्रैक. कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिए. ए दो बातें प्यार भरी और बी आंखों आंखों में. इनमें से जो भी गाना आपको पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कीजिए. और तब तक जरा हम ये काम भी कर लें.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with YONO SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: जी हाँ, इनके जरिए पैसे ट्रांसफर कीजिएगा और पैसे ट्रांसफर करना बड़ा आसान है. यू कैन एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI YONO मोबाइल ऐप के जरिए. TNC अप्लाइज. एंड आज आपका 1 British sterling pound कैन गेट यू अप टू 127 rupees and 15 paisas.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Home is not just where you live. It's where life happens. This September, discover a Mercedes-Benz that's ready for whatever's next. Like the A200 AMG Line Executive Hatchback, now available from £299 a month, with an advance rental of £7,411. Plus, enjoy your first two services for free. Visit your local showroom today. Welcome home. PCH offer ends 30th of September. Four-year lease subject to status and availability. T's and C's apply. Mercedes-Benz Finance covering 1A and 1B service. Mileage intervals apply.
1: This is Sarita Sabharwal on Like a Gold. Like a Gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Starts this Sunday at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
4: Maharaja Tours ke saath is November explore kijiye Singapore, Malaysia aur Thailand, Sentosa Island, Batu Caves, Genting Highlands, Bangkok ke floating markets aur beautiful temples, phir Pattaya aur Coral Island ka maza. Fantastical Far East from sirf £2,799 per person. Flights, 4-star hotels, Indian khana or amazing excursions, sub included. Visit maharajatours.co.uk or call 07956 154 846.
5: London, get ready for an unforgettable night.
6: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
5: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
6: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
5: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
6: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
5: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
7: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
9: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: Every morning, a shopkeeper opens his doors.
11: Lights on, shutters up, staff ready.
10: But today's customers don't start on the high street.
11: They start on their phones, scrolling Instagram, watching TikTok, searching Google.
10: And if your business isn't there, they don't walk past your shop.
11: They walk into your competitors.
10: Social media today decides who gets seen and who gets forgotten. Is your business part of the conversation or invisible? Visit HeartyHanks.com before your competitors do.
11: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
12: Royal Chai laaye hain, smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer, terms and conditions apply.
14: Ganpati Bappa ke aagman se ghar aayengi khushiyan aur sukh samriddhi se sunhera banega aane wala har pal.
15: Let's celebrate this auspicious occasion with delicious ethnic namkeen varieties of Jaimin snacks along with its khakra, mango pulp, son papri and pickles.
14: Available at ethnic grocery store near you. Ganpati Bappa Moria.
16: Deirdre, look, it's the bottom lid this time, sliding across their car bonnet.
17: Leave them be, Philip. They just claim confident.
16: Claim confident?
17: Yes, by doing their own car finance compensation claim, using the FCA's free tools to help, they'll keep 100% of what they're owed. I've just done ours too. Come on!
16: Deirdre? Deirdre? Come back here!
18: Start yours today with help from the Financial Conduct Authority. Search Claim Confident.
19: Laika Gold, London का number one Asian retro music station, अब available है Greater London में 10:35 AM पर, DAB Digital Radio पर, Alexa पे बोलो play Laika Gold और online सुनो laikagold.com पे. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
10: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: राकेश रोशन पर पिक्चराइज हुआ था ये गीत और इस फिल्म का नाम था पराया धन। 1971 में आई थी ये फिल्म जिसे डायरेक्ट किया था राजेंद्र भाटिया जी ने और इसमें बलराज सहनी जी के साथ राकेश रोशन एंड हेमा मालिनी इन लीड रोल थे। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया, बहुत सी पुरानी यादें भी ताज़ा हुई। और जो गीत अब मेरे साथी सुनना चाहते हैं वो गीत मैं प्रोग्राम में शामिल करती हूँ। एक दो वोट सिर्फ बी को मिले और बाकी सभी ने कहा कि हमें आंखों आंखों में टाइटल ट्रैक सुनना है। और मनु जी एंड उल्लास जी ने कहा था ये सुनना चाहते हैं दो बातें प्यार भरी। मैं आप तक पहुंचा रही हूँ आंखों आंखों में वाला गाना क्योंकि ज़्यादातर मेरे साथियों ने उसी गीत की रिक्वेस्ट की है। इनफैक्ट मनु जी ने भी यही गीत सुनना चाहा आंखों आंखों में। निर्मला जी थैंक यू, आपका भी, उल्लास जी आप भी यही सुनना चाहते हैं, सभी को ये गाना पसंद है ज़्यादा। तो आइए ये गीत आप तक पहुँचाते हैं जो मैंने चुना है फ्रॉम द फिल्म आंखों आंखों में।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: ऐसे बहुत से गीत हैं जो राकेश रोशन जी पर पिक्चराइज हुए और बहुत फेमस भी हुए, पॉपुलर हुए ये गाने. उम्मीद करती हूँ सभी गाने आपको पसंद आ रहे हैं. और अब जरा ये काम भी कर लें.
2: सरिता समरवाल विद योर वीकेंड क्लासिक्स.
1: भी बता दें आपको, सुनील ग्रोवर आ रहे हैं, कॉमेडी जीनियस सुनील ग्रोवर, लाइव इन लंदन एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन थर्सडे 29th ऑफ अक्टूबर. एंड लेस्टर में होंगे वो, लेस्टर मैट्यूटी अरीना में सैटरडे 31st ऑफ अक्टूबर को. टिकट्स एट AXS एंड इवेंट ब्राइट से आप टिकट ले सकते हैं. एंड ऑल्सो फ्रॉम टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइक अ रेडियो नेटवर्क. और रागासन हमारे कन्फर्म पार्टनरशिप में है विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागासन. डिटेल्स एट likearadio.com.
2: सरिता समरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन Like a Gold. Like Extra पॉडकास्ट अपडेट.
1: राइट, बता दें आपको कि इस बारी पॉडकास्ट में हैं मोहम्मद वकील, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बात करेंगे रवि शर्मा जी से. इन दिस स्पेशल एपिसोड रवि जी सिट्स डाउन विद रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरी बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी. लाइक आ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइक आ एक्स्ट्रा. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: The movie is starting. Turn off your phones.
4: Ah, very smart. The mobile have already completed its destinies.
5: Destinies? What destinies?
4: Bringing everyone to the movies. Because I decide people's only need to download the app to get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday. I amaze myself.
3: Alexander, phone off.
4: Get the Compare the Market app to enjoy 2-for-1 cinema tickets.
6: Participating cinemas, 2 standard tickets, cheapest free. Only on Tuesdays or Wednesdays. Ends 19th of July 2027. T's and C's apply.
7: Ye hai Like a Gold. Like a Gold.
8: TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays. Hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: Travel Hub, best service with unbeatable price.
8: At all protected.
9: Visit TravelHubWorld.com.
10: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
11: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
12: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
13: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
14: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
15: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
16: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान।
17: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colours TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss house, exclusively on Jio Hotstar.
18: 24 days, South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
19: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. It's summer on the Leica Radio Network.

0: फिल्म कामचोर से चुना था मैंने इस गीत को, राकेश रोशन एंड जयप्रदा पर ये गाना पिक्चराइज हुआ।
1: ये है लाइका गोल्ड।
2: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.
3: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
2: साउथ हॉल ट्रेवल at all protected
4: 07300998823। नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग, और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour, from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk. Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
6: Two businesses,
7: same town,
6: same service.
7: One appears on page one of Google,
6: the other doesn't.
7: Guess which one gets the customer?
6: The truth is brutal.
7: The first page of Google gets the business.
6: Everyone else gets what's left.
7: So here's the real question:
6: when your customers search for what you sell, do they find you?
7: Visit HeartyHanks.com and stop letting Google choose your competitors.
6: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
8: The wait is finally over.
9: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
8: Mirzapur is coming to the big screen.
10: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
8: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawaal.
11: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
8: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, in cinemas now.
10: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
12: शोएब आलम पेश करते हैं सोलफुल कवाली की महफिल, कवाली क्वीन तैयबा खान के साथ।
13: अपना बनाया तेनू,
12: लुत्फ लीजिए उनकी शानदार गायकी का। वेंसडे 9 सितंबर ग्रीनफुट टाउन हॉल में और थर्सडे 17 सितंबर इल्फट टाउन हॉल में। टिकट स्टार्टिंग फ्रॉम £20। VIP एंड मीट एंड ग्रीट टिकट्स आल्सो अवेलेबल। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए कॉल शोएब आलम ऑन 07939137216। टिकट्स आल्सो अवेलेबल एट खान बाबा रेस्टोरेंट, 407 हाई रोड, इल्फट।
14: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951.

0: आशा भोसले एंड किशोरदा की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया। फिल्म का नाम था जख्मी और इस आवर में हमने सभी वो गीत शामिल किए जिनके साथ राकेश रोशन जी का एक रिश्ता, चाहे उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म या डायरेक्ट की या फिर उन्होंने उस फिल्म में एज ए हीरो काम किया, लीड रोल में काम किया। उम्मीद करती हूँ मेरे चुने गीत और बातचीत पसंद आए और उन राकेश रोशन जो आज अपना बर्थडे मना रहे हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। इसी तरह से वो फिल्में बनाते रहे और अपने बेटे को भी तो उन्होंने लॉन्च किया और वो भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्मों में काम कर रहे हैं। चलिए अब न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, फिर अगले आवर में मिलते हैं।
1: Across Greater London, this is Leica Gold, 10:35 AM, DAB and online, a part of the Leica Radio Network.
2: Top stories this hour. The two US envoys sent to kickstart talks to end Russia's war in Ukraine are feeling upbeat after a weekend of discussions.
3: The president asked Jared and I to come here because this is so important to him. I think we really feel good about what has happened in the conversations in Moscow and now the conversations here. I want to thank you, President Zelensky, for your hospitality.
2: That's one of them, Steve Witkoff. He and Jared Kushner held talks with Vladimir Putin in Moscow yesterday before getting on a train to Kyiv and having discussions with President Zelensky earlier. They say they hope three-way talks can restart soon. Exit polls suggest Germany's far-right AfD has become first in a regional election in Saxony-Anhalt, but it appears to have fallen just short of the majority needed to become the country's first far-right state government since the Second World War. Up to 4,000 jobs

0: फिल्म संघर्ष से चुना था मैंने इस गीत को, सोनू निगम एंड श्रद्धा पंडित की आवाज़ों में गाया हुआ बड़ा ही मीठा सा गाना था और उम्मीद करती हूँ कि इसकी मिठास आप तक भी ज़रूर पहुँची होगी। एंड प्रोग्राम का आगाज़ हुआ इस आवर का दिल का क्या कसूर फिल्म के गीत के साथ, आशा भोसले एंड कुमार सानू की आवाज़ें थी। बैक टू बैक दोनों गीत आपको पसंद आए होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आपके मैसेजेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। बहुत लंबी लिस्ट है, हारप्रीत सुन रही हैं वैंकूवर में, मीना लखानी जी, भारती जी, विजय गुदरी जी, निर्मला जी, अरुणा जी, उल्लास इन टोरंटो, अमिता जी, विमल रायन, वत्सला जी एंड तोशी, अमृता जी, तोची पनेसर जी, इंतशाब, मनु जी, रीटा जी, मिसिस शेख आप सुन रही हैं इस्लाम में, महेंद्र बरजारिया जी साउथ हैरो में, एंड आप कौन हैं रीटा जी, थैंक यू आपका, पूनम पुजारा जी आपका भी धन्यवाद, हर्षदा लंबानी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वीना विनी विनोद एंड वरुण जी, संतोषी हैरो, रमीला जी, अर्जन जी, दिव्या हैरो में, मीना शाह एंड मोहम्मद अयूब चौहान साहब, जैस्मिन जी, हंसा बोरा जी, सलमा इन मेडस्टोन, ओ माय गॉड बहुत लंबी लिस्ट है आप सभी का, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, इसी तरह से साथ देते रहिएगा। राइट, अब दो गीत तो आपने सुन लिए बैक टू बैक इस हवा के, अब आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं हमारी माला सिन्हा और इतनी खूबसूरत फिल्मों में उन्होंने काम किया है और पता नहीं चल रहा कि कौन सा गीत आप तक पहुंचाऊं। चलिए, मैंने बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म के दो गीत मैंने क्यों किए हैं, उनमें से एक गीत ही शामिल कर सकती हूं। एक गीत है वो हंस के मिले हमसे हम प्यार समझ बैठे आशा भोसले जी की आवाज़ में, और दूसरा कोई कह दे ज़माने से वो वाला गीत। कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी से मुझे व्हाट्सएप करके बता दीजिएगा। ए वो हंस के मिले हमसे और दूसरा कोई कह दे कौन सा गीत आपको ज़्यादा पसंद है जल्दी बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर तो याद है ना, नहीं याद है तो सरिता आपको याद करा देती है, जानती है ना क्या नंबर है।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744-232323.
0: So, agar apni pasand shamil karana chahte hain, to jaldi likhiye.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: चलिए SBI के जरिए अगर पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो काम बड़ा आसान है। यू कैन गो इन द ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप के ज़रिए आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। TNC अप्लाइज और आज आपका 1 ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू अप टू 127 रुपीस एंड 15 पैसास।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Welcome to the Money Supermarket Training Academy, where we put our new recruits through their paces, training them to be their very best at saving the nation money, turning them into deal-finding hotshots, and teaching them how to come up with fantastic rewards for our customers.
3: Is this the
2: Money Supermarket Training Academy? Absolutely. Come in!
4: Money Supermarket, where better off begins. Download the app today. Rewards include prepaid MasterCard, qualifying purchase with logged in account, 18 plus UK only, see site for T's and C's.
1: Sarita Summerwall with your weekend classics. Like a gold. This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
5: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए
6: आइए एक यादगार शो के लिए।
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवर अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
8: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
6: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
9: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
10: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
11: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
10: ये तो बताओ, कोई पता चला?
11: गुरु गुरु,
12: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
11: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
12: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
10: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
13: शीघ्र शीघ्र।
12: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
14: टू बुक कॉल 0208-514-5400। Book online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
15: We're finally going home for the wedding.
16: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
15: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
16: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
15: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
16: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
15: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
1: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
17: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
18: Caratino Better Ghee, the healthier, low price, cholesterol free butter ghee alternative. Caratino Better Ghee, available in Tesco's, Asda, Morrison's and local grocery stores. Caratino Better Ghee.
19: Leica Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LeicaGold.com.
1: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: क्या बात है, क्या बात है, इन गीतों की बहार बहारें फिर भी आएंगी। इस फिल्म से चुना था मैंने इस गीत को, माला सिन्हा की। इतनी प्यारी प्यारी फिल्में हैं ना, उनमें से बहुत सारे गीत इस हफ्ते शामिल नहीं हुए और मैंने सोचा कि फ़ायदा उठाना चाहिए इस बात का, और मैं दो गीत और शामिल करने वाली हूँ इन्हीं की फिल्मों के। वेल, प्यासा में इनका काम बहुत ज़बरदस्त था, धूल का फूल एंड फिर सुबह होगी, हरियाली और रास्ता, अनपढ़, दिल तेरा दीवाना, गुमराह, बहुरानी, जहान आरा, बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। तो अगला गीत भी मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे। बता दूं कि बहारें फिर भी आएंगी का ये गाना लास्ट हमारे यहाँ से 25th of February 2026 को प्ले हुआ था और इतने महीने बाद आज सरिता ने प्ले किया है और उम्मीद करती हूँ आपने ज़रूर इन्जॉय किया।
1: Good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Another beautiful song. Film ka naam tha Sanjog aur is film mein bhi heroine thi Mala Sinha. Lata ji ki awaaz mein gaaya hua ye geet, आशा है आपको पसंद आएगा।

0: ऐसे गीत सदाबहार गीत हैं और ऐसे ही गीत आप विंटेज गोल्ड में सुनते हैं और आज भी आप विंटेज गोल्ड प्रोग्राम सुन पाएंगे अभिषेक के साथ। सैंडी शाह नॉर्मली ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते हैं और ये बता दूं कि ये गाना आप तक किसने पहुंचाया?
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai Laika Gold.
0: और जरा सरिता आपको ये भी बता दे कि 20th सीजन बिग बॉस का शुरू हो रहा है आज ही रात से एंड होस्टेड बाय सलमान खान। द शो इज एवरी डे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार फ्रॉम दिस संडे यानी आज से 6th of September एंड फॉर द फर्स्ट टाइम जियो हॉटस्टार विल स्ट्रीम every episode along with a live 24/7 feed from the Big Boss 20 house. Jio Hotstar is now also available as an app on Sky TV.
4: Like a gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.
0: Another beautiful song. Aur ye bhi maine chuna hai Mala Sinha ki hi film se. कौन सा गीत है? फिल्म का नाम था आसरा, याद है आपको?

0: लता मंगेशकर जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मैंने चुना था फिल्म फकीरा से, और इसे शामिल करने का एक रीज़न ये भी था कि आज ही के दिन 1976 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी एंड शशि कपूर एंड शबाना आज़मी ने इस फिल्म में काम किया था, सीपी दीक्षित ने इसे डायरेक्ट किया था, रविंद्र जैन जी ने इस फिल्म के सारे गाने भी लिखे थे और म्यूज़िक भी उन्हीं का था। उम्मीद करती हूँ गीत को आपने थरली इन्जॉय किया। जो मेरे साथी अभी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच, आप इसी तरह से हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया करें। वजाहत आप भी अभी अभी आए, अमिता जी, महेंद्र बरजारिया जी, थैंक यू, निक गज्जर जी, रानी ऑफ सलाव, देश राज बसन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो लास्ट टोरंटो में सुन रही है मीना लखानी, थैंक यू।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम, ग्रैब योर कोको बोल टुडे।
0: ऐसी और भी गीत हैं दो तीन, वेल और जो फिल्में आज ही के दिन रिलीज़ हुई उनके नाम है फिर वही दिल लाया हूँ, 6th of September 1963 में रिलीज़ हुई थी, शिकार इन 1968, आज ही के दिन बेपनाह आल्सो इन 1985 एंड 1985 में ही तवाइफ, ये फिल्में रिलीज़ हुई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा फिर वही दिल लाया हूँ का गीत सुनाऊँ या फिल्म शिकार का पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठ। ये गाना सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, तब तक मैं ये काम कर लूं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Right, आप अगर पैसे भेजना चाहते हैं LemFi के जरिए तो आज आपको एक पाउंड के बदले मिलेगा इंडियन रुपीज 127.73, अफगान अफगानीज 87.11, पाकिस्तानी रुपीज 375.1 एंड बांग्लादेशी टका 166.13, श्रीलंकन रुपी 443.56 एंड US डॉलर्स 1.35.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on Leica Gold.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: गोल्ड का रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 105 pounds and 35 pence का, सिर्फ और सिर्फ 1 gram सोना।
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: निशा नासिर लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में, मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
1: दिस इज लाइका गोल्ड।
0: जी हाँ, आप जहाँ भी बैठे सुन रहे हो, उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा साथ जो 3 घंटे तक दिया, अपना अमूल्य समय मुझ तक पहुंचाया, मुझसे शेयर किया, उसके लिए तह दिल से आप सबकी शुक्रगुजार हूं। और ये बता दें कि मेरा आपका साथ सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे होता है 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। इस दौरान मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपका भरपूर मनोरंजन कर पाऊं, आपको एंटरटेन कर पाऊं और आपकी कुछ यादें ताज़ा करा पाऊं जो आपने पीछे छोड़ दी थी। और जब उन गीतों को आप सुनते हैं तो नेचुरली याद आता है वो समय जब किसी के साथ हमने बिताया था। आपकी भी कोई ऐसी यादें हों और आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीक मेरा साथ देने के लिए पहुंच जाइएगा। हाँ, इस वेंसडे को 9th of September को मैं बाली जी का शो करने के लिए यहाँ आ रही हूँ। बाली जी छुट्टी मनाने जा रहे हैं तो कहने मुझे कहा गया है कि उनकी जगह इस हॉट सीट पर मैं बैठ जाऊं, तो आऊंगी मैं आपकी सेवा में वेंसडे 9th of September। वैसे मेरे बाद अभी यहाँ आ रहे हैं अभिषेक, हु विल बी सिटिंग इन फॉर सैंडी शाह, और विंटेज गोल्ड में आपको ज़बरदस्त पुराने पुराने गीत सुनाएंगे। उसके बाद हमारी गोल्ड नाइट नाइट्स होती हैं ओवरनाइट सर्विस, वो भी गाने बहुत खूबसूरत होते हैं। मैं आपको जिस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ वो फिल्म शिकार से है और ये फिल्म भी आज ही के दिन इन 1968 में रिलीज हुई थी। मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं हम वेंसडे 9th को। मेरे बाद मैनचेस्टर में होंगे कौन जैसी और दूसरी जगह लाइका रेडियो पर आप सुन पाएंगे नीरज को। मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।
1: दिस पार्ट ऑफ द शो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिग बॉस सीजन 20 एवरीडे एट 9:30 PM ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।

0: Antonelli became the first home Formula One driver to win the Italian Grand Prix since 1966. The world championship leader overtook Mercedes teammate and title rival George Russell with just three laps to go, having started 19th on the grid at Monza. From Sky News, I'm Barry Weir.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group. Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: और आज के तापमान पर शाम के समय अपनी निगाह डालेंगे तो पता चलेगा कि भाई अभी 23 डिग्री है और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी लगभग 19 डिग्री पर तापमान सेट हो जाएगा। कल जब एक नया दिन होगा तब 24 डिग्रीज मैक्सिमम, 15 डिग्रीज मिनिमम और धूप आज जितनी नहीं होगी कल।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Sandy Shah.
2: हाँ जी, ये सैंडी शाह का शो है जिसे कहते हैं विंटेज गोल्ड। और विंटेज गोल्ड में कल ही की तरह आज मैं आपके साथ अभिषेक दीक्षित आपके साथ पूरे तीन घंटों के लिए। विंटेज है तो विंटेज ही रहेगा। शुरुआत करेंगे मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गानों के साथ, मस्ताना गाना।
1: Leica Gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: TravelHub.
3: At all protected.
1: Leica. Vintage Gold. Every weekend with Sandy Shah.
5: चल शुरू हो जा।

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर
1: सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा
2: This is Leica.

0: अमर कहानी फिल्म का ये गाना सुरैया की आवाज में टेरी वैली के सौजन्य से आपके घरों तक पहुंचा, उनका बहुत बहुत शुक्रिया भाई।
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.
0: और अब आवाज सुनिए मुकेश की और इसे पसंद कीजिए भाई। एक बार फिर से सुनने का मन होगा ये गाना खत्म हो जाने के बाद। सुनिए।

0: और मुकेश जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भाई एक और बार इस गाने को सुना जाए, जैसा कि मैंने पहले कहा था। पर आपको पता है मुकेश जी किसको आइडियलाइज, मतलब किसको अपना आदर्श मानते थे जब उन्होंने गाना शुरू करा था? केएल सहगल को। उनके अगर 1940 और 50 के दशक, ये तो खैर 1950 के दशक का गाना था, पर उनके शुरुआती गानों को आप सुनेंगे, कोशिश करूँगा निकाल के लाऊँ एक, तो आपको लगेगा केएल सहगल गा रहे हैं। वो केएल सहगल को बहुत बहुत एडमायर करते थे, उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे। भाई केएल सहगल का जलवा ही ऐसा हुआ करता था उस समय। इस प्रोग्राम में एक आध गाना लगाने की ज़रूर कोशिश करूँगा, मेरे भी फेवरेट हैं। एक गाना मुझे बड़ा पसंद है, सैंडी से हमेशा उस गाने को चुराने की कोशिश करता रहता हूँ, अगर मिल जाए तो देखेंगे, मिला तो जरूर लगाऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, आशा भोसले की आवाज होगी अगली।
1: Classics to make your weekends feel good. This is Sandy Shah on Like a Gold.

0: दो बदन फिल्म का ये गाना, जैसा कि मैंने कहा, आशा भोसले की आवाज में। अगली आवाज होगी किशोर कुमार की।
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Ya Wo. Only like a gold.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: द लाइका रेडियो नेटवर्क, द परफेक्ट साउंडट्रैक फॉर अ ब्रिटिश समर हीट वेव.

0: पावरे नैन से ये गाना आपने सुना, राजकुमारी की आवाज में। बहुत ही कम गाने गाए पर बहुत ही दर्द भरी आवाज। और राजकुमारी जी का पूरा नाम था राजकुमारी दुबे। सन 2000 में उनका निधन हुआ, पर 1924 में उनका जन्म हुआ था। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब वो लगभग 10 साल की थी तभी उन्होंने अपनी गायकी शुरू कर दी थी। और बहुत ही शुरुआत में वो कुछ नाटकों में, आपको तो याद होगा भाई अगर आप इस बारे में जानकारी रखते हैं, कि पहले फिल्में बड़ी ही मुश्किल से बनती थी, 1940 के दशक से बननी शुरू हुई। इसके पहले तो स्टेजेस हुआ करते थे, वहाँ से अपने करियर की शुरुआत करी। राजकुमारी जी दुबे 2000 में हमें छोड़कर चली गई, दर्द भरी आवाज़ की मलिका। भावरे नैन से आपने उनका गाना सुना, क्यों मेरे दिल में।
1: Sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप LemFi का उपयोग करेंगे तो आपको एक ब्रिटिश पाउंड के ब्रिटिश पाउंड के बदले में मिलेगा इंडियन रुपीज़ 127, अफगान अफगानी मिलेंगे आपको 88, 374 पाकिस्तानी रुपीज़, 166 बांग्लादेशी टकास, 443 श्रीलंकन रुपीज़, कैनियन शिलिंग विल बी 174 और US डॉलर 1.3।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now.

0: हेमंत कुमार की आवाज और उन्हीं का म्यूजिक, अनुपमा फिल्म का ये गाना। और इस गाने में आपको अगर याद हो तो धर्मेंद्र थे भाई, ब्लैक एंड व्हाइट में पिक्चराइज हुआ ये गाना। सफ़ेद कुर्ते पजामे में अपने हाथ को बांधे खड़े एक महफिल में ये गाना गा रहे थे भाई। ऐसा लगता था कि वो जो धर्मेंद्र थे वो ही मैन नहीं थे, वो थे एक चॉकलेटी बॉय। मतलब इतने इतने इतने हैंडसम, क्या बात है। और गाना भी उतना ही मधुर। आपने लाइका गोल्ड से सुना, आपके घरों तक पहुँचा।
1: ये है लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
4: फोन 02085748410।
3: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
5: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
6: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
5: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
6: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
7: No, sorry, mate.
8: No, we don't have that part.
7: Have you tried down the road?
9: We can get it in, but it won't be for a few days.
8: There are some things in business you can't control, but you can stay in control of your van's downtime. Because our uptime promise is our commitment to keep you moving, with 82% of breakdowns fixed at the roadside and 24/7 cover for up to 30 years. Mercedes-Benz vans, we've got your back. T's and C's apply. Subject to servicing with the Mercedes-Benz authorised repairer. Full terms at mbvans.co.uk/mobilovan.
10: We're finally going home for the wedding.
11: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
12: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos and keeping everyone updated.
11: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
12: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
11: Exactly. Flat rate, no bill shock and ready in just 3 minutes.
12: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
13: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
14: Sonatours.co.uk. 13 days Vietnam and Cambodia departures every month, September to December. Get 100 off if you book this month. Call Sonatours now on 0208-951-0111.
15: Minar Jewelers. Agar aap sona bechna chahte hain ya valuation karwana chahte hain, to uski sahi qeemat ke liye tashreef le jaiye Minar Jewelers par. 181 Upper Tooting Road. Ya visit kijiye minarjewelers.com. Call 0208-767-7627.
16: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
17: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
16: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
17: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
18: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा।
17: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: Asian Achievers Awards, Friday, September 18th at London Hilton Park Lane. Exclusive radio partner, Leica Radio Greater London.
19: Leica Gold, London's number one Asian retro music station.

0: आपकी परिचय फिल्म के इस गाने के साथ हम लगभग फर्स्ट आवर के एंड पे आ ही गए हैं भाई। आप लोगों के मैसेजेस मिलते जा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। फिलहाल मैं आपको किशोर कुमार और उनके साथ कुछ कोरस में गाने वालों के साथ छोड़े जाता हूँ। बॉम्बे टू गोवा फिल्म का ये एक मस्ताना गाना अपने आवर को पूरा करेगा।
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at leicaradio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app.

0: 15 degrees.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Sandy
0: Shah. आज ही सैंडी शाह का शो है जिसे कहते हैं विंटेज गोल्ड, और मैं धीरे धीरे बोलूंगा, धीरे धीरे मतलब थोड़ा आराम से। तो विंटेज गोल्ड में आपका स्वागत है, यह है दूसरा आवर, और दूसरे आवर की शुरुआत करेंगे किशोर कुमार के एक गाने के साथ। भाई मेरा पर्सनल फेवरेट है, आपका हो तो जरूर बताइए।
2: Like a gold. Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
3: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
4: Travel Hub.
3: At all protected.
2: Leica. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: ये गाना आपने सुना किसकी आवाज़ थी? केएल सहगल की आवाज़ थी क्या ये? जी नहीं, ये केएल सहगल की आवाज़ नहीं थी, ये आवाज़ थी मुकेश की। जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम के पहले से बताया कि किशोर कुमार नहीं, मेरे दिमाग में किशोर कुमार घूमते रहते हैं, क्या करूं। मुकेश जी अपने आप को बड़ा इंस्पायर करते थे केएल सहगल की आवाज़ से, उनके बहुत बड़े मुरीद थे ऐसा कहा जा सकता है, और उन्हीं की तरह गाने की कोशिश करते थे। ये निर्दोष फिल्म का गाना था 1940 के बाद, क्या था है 1941 की ये जो फिल्म थी इसका गाना था ये। इट हैपन्स टू बी द फर्स्ट फिल्म ऑफ मुकेश जी, मतलब उनकी पहली फिल्म थी ये, और बड़ा ही अच्छा गाना गाया उन्होंने। सुनने वाले बड़े कंफ्यूज हो जाते होंगे उस समय कि भाई केएल सहगल गा रहे हैं या मुकेश, जो भी गाए भाई लगता बड़ा अच्छा है। विंटेज गोल्ड है ये, और इस तरह के गोल्ड की डिगिंग, मतलब हम सोने को खोदते रहेंगे। अगला ऐसा ही एक सुनहरी गाना आ रहा है तलत महमूद की आवाज में।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और ये गाना आपको पहुंचाया डेरी वैली ने भाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद निक गज्जर जी का भी जिन्होंने ये गाना बताया।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Across Greater London and Greater Manchester, this is Sandy Shah.

0: कितना प्यारा गाना है ये इंसाफ फिल्म का जो 1956 में आई थी। और जी हाँ, तलत महमूद गा रहे थे और उनका साथ दे रही थी आशा भोंसले। बड़ा ही मधुर गाना। मैं गाने सुनते सुनते आवाज़ पर गौर करता हूँ और सोचता हूँ कि क्या ये वही हैं जिनको मैं अभी 90-2000 के दशक में सुन रहा था, बल्कि 2020 तक भी गाने गाए हैं आशा भोंसले ने। ये उन्हीं की आवाज़ है? नहीं, बहुत ही मासूम सी आवाज़ थी आशा भोंसले की इस गाने में। तलत महमूद का साथ दे रही थी, दो दिल धड़क रहे हैं।
1: This is Like a Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold Greater London.
0: और ये लता मंगेशकर हैं जो आपके साथ वो कौन सी फिल्म का एक गाना ले।

0: यादगार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज जिस पथ पर चला, बहुत ही बढ़िया। और कुछ लोगों ने अभी अभी ज्वाइन करा है, नाम पूछना चाहते हैं भाई अभिषेक दीक्षित कहते हैं बंदे को, मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, आज सैंडी शाह की जगह विंटेज गोल्ड पर आपके साथ। और लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 32, होस्टेड बाय रवि शर्मा जी, और टाइटल है मोहम्मद वकील स्पेशल। इन दिस स्पेशल एपिसोड रवि शर्मा सिट डाउन विद रिनाउंड आर्टिस्ट मोहम्मद वकील टू एक्सप्लोर द स्टोरीज बिहाइंड हिज म्यूजिकल जर्नी। वकील जी रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज एक्सपीरियंसेस एंड मेमोरेबल मोमेंट्स विद द लीजेंडरी जगजीत सिंह एंड जावेद अख्तर फॉर एस्पायरिंग सिंगर्स। वकील जी ऑल्सो शेयर्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, अ हार्ट फेल्ट कॉन्वर्सेशन फिल्ड विद म्यूजिक मेमोरीज कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट्स एंड वैल्यूएबल लेसन्स। तो भाई लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, इट्स अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। लाइक अ एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
1: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options. And get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
2: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
5: विजिट मंत्रा हॉलीडेज .co.uk और कॉल 0203-776-333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स your travel mantra?
6: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
7: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
8: Dubai is the place. 11, 11.
7: Call the Danu Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
9: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
10: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
11: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler. Get ready for winter.
12: Hey, फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
13: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in 4 mazedar flavors.
12: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
14: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
15: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
14: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
15: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
16: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. On on this week's Leica Extra podcast, Ravi Sharma talks to singer Mohammed Vakil, winner of Sa Re Ga Ma Pa.
17: अगर हम सामने वाले की इज्जत करेंगे अपने बड़े की, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, जमाना हमारी इज्जत करे, और जिसने अपने गुरु की और माँ बाप की दुआ दे दी उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता। बड़े पंडितों उस्तादों का कहना है कि संगीत अपने आप में एक ऐसा काम है जो आपके दिल और दिमाग को सुकून पहुँचाता है।
16: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: बसंत बहार फिल्म का एक गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज। और इस तरह का गाना सुनकर ऐसा लगता है कि भाई क्या बात है, आज की जो शाम रात की तरफ बढ़ चुकी है अब लगभग पूरी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि बस ये रात अब थोड़ी देर और चले और उसके बाद हम एक अच्छी सी नींद के आगोश में चले जाएं। पर नहीं भाई साहब, अभी जाना नहीं है। अभी कार्यक्रम का लगभग 1 घंटा और 28 मिनट बचे हैं और इससे भी अच्छे गाने आपके लिए मैं पेश करूंगा, इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। अभिषेक दीक्षित के साथ हैं आप विंटेज गोल्ड पर।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और अगर आप LemFi का यूज़ करते हैं तो 1 British sterling can get you 127 Indian rupees, 88 Afghan afghani, 374 Pakistani rupees, 166 Bangladeshi taka, 175 Kenyan shilling। भाई पिछली बार Kenyan shilling नहीं बताया था तो इस बार ज़रूरी हो जाता है। और भी आपको मिल सकते हैं $1.35।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: LIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at 105.35 pence per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a Gold. Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station.
0: और इसके पहले वाला जो गाना था तेरी शहनाई बोले, वो बसंत बहार फिल्म का था, गूंज चुई शहनाई का नहीं था। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है। बसंत पर एक और गाना सुनिए, लता मंगेशकर की आवाज़।

0: हमारी अभिनेत्री दौड़ी चली जा रही हैं किसी को रोकने के लिए। कौन है वो अभिनेत्री? देश देश में गंगा बहती है फिल्म का ये गाना था 1960 के दशक में आई हुई। और संगीत किसका था भाई? ये कोइंसिडेंस है, जब जब मैं संगीतकार की तरफ अपना ध्यान देता हूँ तो वो शंकर जयकिशन निकलते हैं भाई। शंकर जयकिशन का म्यूजिक ही बड़ा अच्छा। और ये गाना मेरे ख्याल से शैलेंद्र ने लिखा था या हसरत जयपुरी ने, मुझे लगता है हसरत जयपुरी ने लिखा था ये गाना। अभी मैंने आपसे पूछा कि एक हीरोइन इस गाने को गाते हुए किसी को रोकने के लिए दौड़ी जा रही है, कौन है वो बताइए मुझे।
1: ये है Like a Gold। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
4: No more worries for me or you.
5: Southall Travel, at all protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
7: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 0208-767-2142.
8: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sab kuch efficiently handle karte hain. Perfect location dhoondne se lekar incredible themes design karne tak, world class cuisine se har choti badi requirement tak manage karte hain. 30 saal se zyada ka experience har event ko khas banaye. Foran ka phone milaye 0208839 0880 or visit ragasan.com. Location, design, management ya catering. Ragasan.
9: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
10: This is Like a Gold. Reminisce those classics.

0: मोहम्मद रफी के साथ लगभग एक तरह से अपने आप को ऊंचा करते हुए महेंद्र कपूर भाई, कितना बढ़िया गाना महेंद्र कपूर और मोहम्मद रफी की आवाज में, आदमी फिल्म का ये गाना।
1: चांद आसमां पे है मेरे साथ है।
0: और कैसे गा लेते थे ये इतने डिफिकल्ट, इतने कठिन गाने इतने सहजता के साथ, हमको सुनने में ऐसा लगता है कि भाई क्या क्या होगा इस गाने में, बड़ी मुश्किल गाना। बहुत ही अच्छा लगा। फिलहाल दूसरे आवर का एंड और आपको छोड़े जाता हूँ वाणी जयराम के साथ, हमको मन की शक्ति देना।
2: Feel good classics all day. This is Like a Gold.

0: इससे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
1: ट्रेवल हब
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: लाइका विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं।
2: कहिए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी गाओ।

0: एक मिनट के लिए सोचिए कौन है ये जो गा रहे हैं। सुनने से लगता है कि आरडी बर्मन के जो पिताजी थे एसडी बर्मन, उनकी स्टाइल में उनकी तरह गाया हुआ ये गाना। पर ये एसडी बर्मन ने नहीं गाया था, ये गाया था गाना हेमंत कुमार ने, जन्म से बंजारा हूँ बंधु जन्म से हूँ बंजारा। राहगीर फिल्म का ये गाना 1960 के दशक में आई थी ये फिल्म। और उसके पहले इस आवर का पहला गाना जो आपने सुना, मेरे दिल के करीब रहना बीत जाए शाम न जाए, और इसमें बीच बीच में डायलॉग भी आते हैं जो गाने को और भी अच्छा बना देते हैं। और हमारे राजेश खन्ना साहब कहते हैं आप चुप क्यों हो गई, गाइए ना। अरे भाई क्या कहने, राजेश खन्ना के ऐसे ही दीवाने नहीं होते थे उस समय, और दीवानी नहीं होती थी लड़कियां ऐसे ही। कितनी बढ़िया डायलॉग डिलीवरी उस गाने के बीचों बीच में। फिलहाल थर्ड और फाइनल आवर की शुरुआत हो गई है और बहुत से लोगों ने अपनी नाराजगी जाहिर करी है। यहाँ पर बता रहे हैं कि तेरी शहनाई बोले सुन के जिया मेरा डोले, ये गाना बसंत बहार फिल्म का नहीं है, ये गूंज उठी शहनाई का है। तो भैया हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर आपके सामने क्षमा मतलब सॉरी कहते हैं, यही कहते हैं ना अंग्रेजी में। हाँ जी क्षमा मांगते हैं। यहाँ पर जो प्रदर्शित हुआ वो बसंत बहार बताया, क्यों बताया किसी को बोलना होगा कि इसे ठीक करें। गूंज उठी शहनाई फिल्म का गाना था और उस फिल्म में संगीत दिया था वसंत देसाई ने, भरत व्यास ने इस गाने को लिखा था। तो भाई क्षमा मांग ली, आप लोगों ने क्षमा भी कर दिया। आगे बढ़ते हैं और कुछ पैसे के बारे में बातें करें।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Ready for some good news about motoring costs? Get 10% off Tesco car insurance. Use your Tesco Club card when you buy or renew a car policy with Tesco Insurance and save 10% with Club Card prices. There's a range of cover options, and get this, we've even been named a Which Best Buy 2026 for our gold car insurance cover. To save your 10%, search Tesco Car Insurance and get your quote today. Club Card required. Excludes add-ons. T's and C's apply.
4: Like our gold.
5: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
6: For the first time in London, Siddhayu Ayurveda comes to Quality Foods, Hayes and Hounslow. Join the Leica Radio Network live on the 12th of September for a special Siddhayu experience and enjoy a free hair massage with Siddhayu's Ayurvedic hair oil and shampoo. Discover Siddhayu toothpaste and experience the natural power of Ayurveda. Siddhayu from the House of Baidyanath, backed by over 100 years of trusted Ayurvedic heritage. Come and experience Ayurveda that will transform your life. A free gift with every purchase. Remember, it's the 12th of September at Quality Foods in Hayes and Hounslow. Don't miss it.
7: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ कोई पता चला?
8: गुरु गुरु
9: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
8: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है,
9: सुरेश कुमार और इंदिरा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
7: साधु तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र।
9: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
10: टू बुक कॉल 0208-514-5400, बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
12: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दे'ल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208-574-8410, दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल।
13: at all protected.
14: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
15: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena, Wembley in London.
14: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
15: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
14: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
16: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
17: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
18: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB Digital Radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
20: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: और ये गाना जो आपने अभी अभी सुना ये संजय मलिक की आवाज में था और पंकज मलिक, क्षमा कीजिए, पंकज मलिक की आवाज में नर्तकी फिल्म का गाना, उन्हीं का म्यूजिक। और इस गाने में मैं लगभग खो गया था, इसीलिए जरा 2-3 सेकंड का गैप हुआ। मैं सोच रहा था कि इस गाने में 1940 के दशक में भी इतने उतार और चढ़ाव, और बीच में गाना थोड़ा तेज हो जाता है और फिर से अपनी रिदम पर वापस आता है। पंकज मलिक का जादू चला नर्तकी फिल्म का ये गाना लाइका गोल्ड से आपके घर तक पहुंचा, और ये गाना डेरी वैली के सौजन्य से भी था, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Ye hai
4: Like a Gold.
3: Like a Gold. Ye hai Like a Gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: की हवा निकल गई।
1: जैक लगाओ।
2: किक किक किक किक।
1: टेपनिंग पहिया। अरे पंपिंग।

0: आज ये किशोर कुमार और उनके साथ जॉनी वॉकर मस्ती कर रहे थे। स्क्रीन पर भी जॉनी वॉकर दिखे थे और उनके साथ में थे देवानंद टैक्सी ड्राइवर। फिल्म का ये गाना 1950 के दशक से।
1: Vintage Gold with Sandy Shah on Like a Gold, Greater London.

0: आशा भोसले और किशोर कुमार। अपराध फिल्म का ये गाना भाई बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहने की कोई ज़रूरत नहीं, हम उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं।
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
0: अब केएल सहगल की आवाज़।

0: काला फिल्म, काला पानी फिल्म का ये गाना, भाई इसमें कौन थे, कौन थे बताइए, जो आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के पीछे पर्दे पर आगे दिखाई दिए थे, बताइए अगर आपको पता है तो। आखिरी आवर है और कुछ गाने, शायद तीन गाने मोहम्मद रफ़ी के गाने होंगे, सुनिए लाइका गोल्ड पर।
1: दिस इज लाइका गोल्ड। This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar.

0: कन्यादान फिल्म के इस गाने के साथ पूरा हो जाने देते हैं। कन्यादान फिल्म के इस गाने के साथ हम आ पहुंचे हैं भाई विंटेज गोल्ड के तीसरे आवर के एंड के आसपास। आज आप मेरे साथ रहे, मैं कौन था भाई, मैं अभिषेक दीक्षित, क्या कहता हूं मैं अपने आप को, परमानेंटली टेम्पररी प्रेजेंटर, मतलब मैं यहाँ पर आता जाता रहता हूँ। जब भी अगर कोई प्रेजेंटर नहीं होता, स्टेशन मैनेजर हमें बताते हैं कि भाई एक शो है जो आप करिए, ज़रूर आ जाते हैं। सैंडी सर का शो मेरे दिल के करीब, अगर मैं ये शो नहीं करता तो मैं ये शो सुनता ज़रूर हूँ। आप भी सुनते रहिए, फिर आपसे कभी मुलाकात होगी या तो इस शो में या किसी और शो में। फिलहाल जैसा कि मैंने कहा था, मोहम्मद रफ़ी होंगे आखिरी दो गानों में, उन्हीं के साथ आपको छोड़ा जाता हूँ, पतंगा फिल्म का यह गाना। शुभरात्रि, अपना ध्यान रखिए।
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: ये है
1: लाइका गोल्ड
2: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com
3: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड
3: Visit travelhubworld.com.
4: Here at Acorn Insurance, we help taxi drivers like you so you can help people like Jasmine.
5: Oh, terrible weather.
4: It's raining cats and dogs out there and she doesn't want to look like a drowned rat for an interview. You help Jasmine stay dry and we'll help keep you covered.
6: See ya, good luck with the interview.
5: Thank you, bye.
4: Acorn Insurance, the UK's largest taxi insurance specialists. Find out more at acorninsure.co.uk/taxi. Acorn Insurance and Financial Services Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority.
7: Southall Travel, 7 days a week. Southall Travel, 24 hours a day, we're at our peak.
8: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
7: Southall Travel.
8: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
9: Southall Travel, at all protected.
10: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
9: विजिट mantraholidays.co.uk और कॉल 0203 नाउ Mantra Holidays. What's your travel mantra?
11: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
12: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
11: Live on Sunday, the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
12: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
11: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
12: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
13: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
14: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
15: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
14: Get your free tickets. Book now using the promo code LAIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
15: Exclusive media partners LAIKA Radio. Sponsored by Sari Pleta, Shana Foods, Begin and Regrow.
16: बिग बॉस में इस बार मिलेगा प्रधान और एक्स्ट्रा जीवन दान दरखास्तों में जान
17: Big Boss Season 20, every day at 9:30 p.m. on Colors TV and Jio Hotstar. And for the first time, watch a live feed from the Big Boss House, exclusively on Jio Hotstar.
18: ताज़ा करें अपनी यादें, लाइक अ गोल्ड के साथ.

0: प्यार बिना जीवन है टोटल फ्लॉप। पुण्य पाप के चक्कर में कोई पढ़ के सके ना बच।
1: क्यों रे चले, झूठ कहा?
2: नहीं गुरुजी, सच।
0: थैंक यू वेरी मच। मन

0: भव सागर से उतर जाएगा। मोटे अकल वाले ना समझे मेरी बात, बारीक है।
1: क्यों चले जी, गलत कहा?
2: नहीं गुरु जी, ठीक है।

ठांडे बाप की रे, बाप की रे सूट पहन कर कैसा तू दे भांडे। कौआ जैसे पंख मयूर का अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे, अपने दुम में बांधे। अरे क्या